0: ब्रैम्पटन वालों, हुन महंगे परफ्यूम आते $400-500 लॉन दी बिल्कुल लोड नहीं। रॉयल परफ्यूम्स दी हो चुकी है ग्रैंड ओपनिंग। स्विट्जरलैंड तो इंपोर्ट कीते ऑयल्स नाल तैयार डियोर ते शनेल वर्गी सेम फ्रेग्रेंस जो चले 8 घंटिया तो भी वध। हर परफ्यूम सिर्फ $50 विच अते रेडियो उड़ान दे स्रोतियां लई खास धमाका। बाय टू गेट वन फ्री यानी $100 चे 3 परफ्यूम ते नाल एक तोहफा रेडियो उड़ान प्रभ संधु दा रेफरेंस देन ते। अपने आप नू फुल्लां दी तरह महकाओ। आज ही आओ Unit 9, 1 Regan Road ब्रैम्पटन, सिख संगत गुरु घर दे नेड़े, जा ऑर्डर करो www.royalperfumes.co ते, कॉल करो 437-315-0701।
1: तुसी सुन रहे हो रेडियो उड़ान प्रभ संधु दे नाल। प्रोग्राम दे इस हिस्से नू स्पॉन्सर कर रहे ने BDS पेंटिंग, एक वधिया पेंटिंग सर्विस। BDS होम पेंटिंग हाजिर है तुहाडे घर, बेसमेंट ते कमर्शियल यूनिट नू नवा बनाउण लई, नवे रंगां नाल चमकाउण लई। प्रोफेशनल पेंटिंग सर्विसेज, चाहे होवे स्प्रे पेंटिंग, किचन कैबिनेट रीफिनिशिंग, ड्राईवॉल रिपेयर ते स्टको रिमूवल, डेक ते फेंस पेंटिंग, फिनिश्ड बेसमेंट, हार्डवुड ते लैमिनेट फ्लोरिंग। घर कमर्शियल या इंडस्ट्रियल, हर किस्म दी पेंटिंग विच माहिर। अज ही कॉल करो BDS पेंटिंग दे जुगराज सिंह होना नू 905-965-6311 905-965-6311।
2: सो बिल्कुल जी, नाल दी नाल तुहानू दसीए कि BDS होम पेंटिंग हुण रेनोवेशन दीआं सेवावां भी दिंदे ने। तुसी डैक, फ्लोरिंग, बेसमेंट फिनिश किसी भी तरह का काम करवाना है, हुण रेनोवेशन दीआं सेवावां भी BDS होम रेनोवेशन ते पेंटिंग तों तुहानू मिल जाणगीआं। 905-965-6311 रेनोवेशन का किसी भी तरह का काम करवाना तां तुसी तां वी जुगराज सिंह हुणां नू कॉल कर लिओ 905-965-6311 ते गलबात हो सकदी है। ते मैनूं मैसेज आया सर सुरजीत संधु, ओह बल्ले संधु साहब, कहिंदे भाई जी नवां गाणा तुसी लाया ही नहीं कदी। नवां गाणा सुना दिंदे आं, तुसी सुनना किहड़ा वीरे? सो मैसेज कर दिओ, कोई नहीं जरूर लावांगे। पर नवे गाने मैं चेक करदा, नवे गाने बई काफ़ी गाने आए आ इस गाने, यार आपां कहने पुराने माहौल जिहा लगदा गाने। एक तां रणजीत बावा होना दा आया हाइप, आई थिंक चा नहीं पुराना हो गया तां बई, किहड़ा गाणा नवां आया? ऑप्स, ऑप्स कल मुंडे ने सुनाता, तो ऑप्स सुनिए, सुनिए एमी बाई होना दा। आजो फिर, क्या बात है, घेंट गाना बाई का, बंदा ही घेंट है बाई।

ब्यूटी इंडस्ट्री की दुनिया में अपना करियर बनाने बारे सोच रहे हो तो हो जाओ टेंशन फ्री। अमायरा एकेडमी हेयर एंड एस्थेटिक्स तुहाडे ऐसे करियर ते ड्रीम्स नु दिखाउण के सही राह जो प्रोवाइड करदे हन सब तो बेहतरीन ते कंप्लीट कोर्स पैकेज पूरे कैनेडा विच। हेयर स्टाइलिंग डिप्लोमा, मेडिकल एस्थेटिक डिप्लोमा, ए सब दे नाल नाल अमायरा एकेडमी अपने यूनिक ते सुपर सैटिस्फाइंग हेयर सर्विसेज एंड स्पा ले वी जाने जाते हैं। हुणे कॉल करो 9053996110 ते और विजिट 114 कैनेडी रोड यूनिट 2 ब्रैम्पटन ओंटारियो। ब्रैम्पटन विच जे तुसी लभ रहे हो बेस्ट क्वालिटी ते इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ता फिर तुहाडी टेंशन हुण छू मंतर हो जावेगी। आओ ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी ते जिथे मिलदे ने फ्रेश वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, स्नैक्स, ग्रोसरीज ते किचन आइटम्स सब इको थां ते एंड माइंड ब्लोइंग वैरायटी नाल तुहानू लघु शॉपिंग दा मजा असली पंजाब वर्गा। याद रखो 100 कैनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन या फिर कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9052304800 ते या ईमेल करो brampton cashandcarry2023@gmail.com ते। स्वाद दे मामले विच कॉम्प्रोमाइज कदे भी नहीं करना चाहिदा, इसे लई तुहाडे लई है विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। 1999 तो लेके ब्रैम्पटन नू सर्व कर रहे हन विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। लुत्फ उठाओ स्वादिष्ट पंजाबी खाने दा, बुफे, डाइन इन, टेक आउट, केटरिंग, लंच ते डिनर सारा कुछ है। स्वीट्स ते स्नैक्स दी वड्डी कलेक्शन भी है जो कि तुहानू जरूर पसंद आएगी। ते फिर देर किस गल दी, अज ही कॉल करो 905-450-3333 ते एड्रेस विलेज ऑफ इंडिया 114 कैनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन।

0: is AM 530. CHLO AM. Serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at AM530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: पंजाब ते अमीर विरसे दी पुक्कल चो यादां दे संतूरी सफर दा हम सफर सांझा विरसा
2: गीत संगीत देश दुनिया दियां ताजा तरीन जानकारियां नाल लबरेज महकां दी सौगात वंडदा सांझा विरसा
1: सोमवार तो शुक्रवार 5:30 AM ते सवेरे 4 बजे तो 5 बजे तक
3: बिजनेस दे प्रचार ते प्रसार लई संपर्क करो
2: सांझा विरसा दी टीम नू 647-835-5294
4: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह अमृत वेले दा जागना जे कोई जागे नित एक वधेंदी आरजू दूजा साहेबा वे चित दे महावाका अनुसार सारे ही नगर निवासियां नू बेनती कीती जांदी है भाई अमृत वेला हो गया 4 बज गए उठो इशनान पानी करो गुरु घर च हाजरियां लवाओ ते गुरु दे जस गाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

0: ट्रक कारा लिया जदो वेखो एदियां कमानियां इटलियां रहंदियां की करा
1: मैं सुनया जी अपने पंजाबी भरावां जे अते गैरी ने खोल दित्ती है GTA विच ट्रकां दे स्प्रिंगां दी पहली शॉप PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट
2: पहुंचो 5330 ब्रेडको बुलेवार्ड मिसीसागा मेन इंटरसेक्शन डिक्सी एंड मैथसन
3: इथे पी लाइन लेजर मशीना नाल अलाइनमेंट ते नवे स्टाइल दियां मशीना नाल बैलेंसिंग कीती जांदी है इन्ना ही नहीं 4 व्हीलर्स अते 18 व्हीलर्स दे टायर्स दा खास प्रबंध भी है जे तुसी ट्रकां ते ट्रेलरां दी कमानियां दा तसल्ली बख्श काम करवाना चाहुंदे हो
1: कॉल करो जे एंड गैरी नू
3: 905-459-5533
1: 905-459-5533
3: PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट

0: Doppelsand, jump, assas, grasses, habits, nodded, horsey, beasts, bole, sonny hall, sassier car.
1: मैं कह जी काफी टाइम तो आप कार दी रेनोवेशन नहीं करवाई ताही ता कार वधिया प्राइस ते सेल नहीं हुंदा
2: शम्मी पठल होरा नाल करो गल कार दी रेनोवेशन करा के लिस्ट कर देने वधिया रैकेट प्राइस ते सेल करवा के दंदे ने
1: रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदन वेचन या इन्वेस्टमेंट ले याद रखो भरोसे ते विश्वास वाला कम्युनिटी दा जानिया पछानिया नाम मल्टी अवार्ड विनर ब्रोकर

0: मेरी बेटी की क्लास में 33 बच्चे हैं। वो बताती है कि वहाँ किसी भी चीज की पूरी सुविधा नहीं है। भीड़ से भरी क्लास और शोर परेशान कर देता है और मदद कभी भी पूरी नहीं पड़ती। ये इसलिए है क्योंकि डग फोर्ड ने 2018 से हमारे सरकारी स्कूलों के बजट में से $6.5 बिलियन काट दिए हैं। हमारे बच्चे इससे बेहतर के हकदार हैं। आइए सरकार से कहें, हमारे बच्चों में निवेश करें, क्लास साइज ठीक करें। एलिमेंट्री टीचर्स फेडरेशन ऑफ ऑन्टेरियो की ओर से एक संदेश।
1: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: सर्दी च हीट नहीं चलदी ते गर्मी च एसी।
1: ले आपा हुणे करदे आ संधू साहब नाल गल ते करदे आ मसले दा हल।
0: एसी फर्नेस गैस लाइन वाटर हीटर या ह्यूमिडिफायर सर्विस या इंस्टॉलेशन नाउ एयर कंफर्ट ते जतिंदर संधू नु कॉल लाओ ते लाइफ च कंफर्ट पाओ। कॉल 647-706-6640
1: 647-706-6640।
2: दुनिया विच किते भी घूमन फिरन लई या सस्ते टूर पैकेजेस लई याद रखो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल 905-678-1200 905-678-1200। कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल दो लोकेशन तो अपनिया सेवावां प्रदान करते ने 2883 डेरी रोड ईस्ट मिसीसागा सेकंड लोकेशन 4550 एबनेजर रोड ब्रैम्पटन।

0: रेडियो आवाज हर रोज सवेरे 9 to 10 बजे तक रेडियो आवाज
1: सर्विस एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी पेड एडवर्टाइजमेंट्स ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम.

0: Chandler Drive, Brampton. Major intersection, Steeles and Kennedy, 9054512600.
1: रियल एस्टेट दी दुनिया बिचाओ अपने सुपने अनु सच कर बखाओ फेयरडेल रियलिटी इंक ब्रोकरेज नाल हाथ मिलाओ
2: रियल एस्टेट दियां परीकियां सिखो ते कंपनी वालों क्लाइंट्स लीड्स भी पाओ
1: फेयरडेल रियलिटी इंक ब्रोकरेज नवे एजेंट हायर कर रहे ने
2: आज ही कॉल करो फेयरडेल दे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड हरदीप पंदेर नू
1: 905-671-2000
2: फेयरडेल नाल हाथ मिलाओ अपने सुपने अनु सच कर बिखाओ

तो जी गुड मॉर्निंग आदाब नमस्ते, आपका पंकज पंजाबी जी हाजिर है आपके साथ अपने प्यारे शो रेडियो आवाज 5:30 AM पे। आपका सबसे बड़ा स्वागत है। आज का दिन बहुत ही बढ़िया है, चढ़दी कला का दिन जाए, सबका दिन बहुत ही बढ़िया जाए। आपका और हमारा साथ रहेगा जी 10 बजे तक। आप सुनते रहिए जी रेडियो आवाज़।

0: चलिए जी, आज की दिन की करते हैं शुरुआत जी। शुरुआत में आज तक मौसम थोड़ा सा हल्का हल्का ठंडी ज्यादा बढ़ चुकी है। सारे ने मुझे लगता है जैकेट ले ली है जी। जिसने नहीं ली है उनको आज ठंडी का सामना करना पड़ेगा जी। चलो जी, आज का दिन अच्छा है। मुझे डेयरी रोड काफी थोड़ा बिजी लग रहा है, 401 भी काफी धीरे धीरे चल रहा है जी। और आज का दिन आपका अच्छा चले, अच्छा जाए। जो भी आपके आज काम हो, सबसे पहले घर से निकलने से पहले एक बात जरूर करनी है, आपके परमात्मा को याद करना है, 2 मिनट एक छोटे से अरदास करनी है और निकलना है। क्यों करनी है? क्योंकि आपका दिन, जो भी आपके काम, जो भी आपके राह, मतलब जो आपके राह है उसमें जो भी छोटी छोटी अड़खने हैं वो निकल जाएगी। और स्टूडियो में, आज स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं जी 9:06, और मेरे साथ आज मेरे साथी कलाकार है जी, हमारे स्पेशल गेस्ट है जी परनीत जी, नजारा की टीम से। परनीत जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप?
1: गुड मॉर्निंग पंकज जी। बस चढ़ निकला, आप बताएं कैसे हैं
0: जी? एकदम बढ़िया जी।
1: सो पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आज हम हिंदी में बात करेंगे या फिर आज आप पंजाबी से गल कराएंगे?
0: आई थिंक जब मैं कैसे कि मैं हिंदी बोलता, पंजाबी मुझे थोड़ी थोड़ी आती है।
1: हाँ,
0: तो अगर मिक्स्ड हिंदी पंजाबी चलेगी दैट्स ऑल्सो फाइन,
1: क्योंकि मेरी मिक्स हो जानी है।
0: चलो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं पंजाबी में बात करूंगा, कि मुझे आती नहीं है। जितने जितने छोटे छोटे वर्ड्स आते हैं मैं ट्राई करूंगा।
1: हाँ,
0: आप पंजाबी बोलने की कोशिश कीजिए।
1: हाँ जी, हाँ जी, वो हमारे घर पे होता है ना कि हमारे जो पापा होते हैं ना, हम वो उनके टाइप की हिंदी होती है, तो वो मतलब पंजाबी में हिंदी बोलते हैं
0: जी।
1: तो मैं पंजाबी में हिंदी बोलने की कोशिश करूंगी आज आपके साथ।
0: चलेगा जी, चलेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलो परनीत जी, दिन शुरू हो गया है जी। सबसे पहले जो मैं कह रहा था कि जो अपने लिसनर्स है कहाँ पे है, कहीं कहीं जा रहे, तो आप आपका दिन, मैं कहता हूँ कि आप प्रेयर से स्टार्ट करो, आप कैसे स्टार्ट करते हो?
1: हाँ जी, हाँ जी। सो हमारे तो ये होता ही है, हमारे खासकर हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम
0: जी जी
1: बहुत हम कल्चर से जुड़े हुए हैं, तो हमारे तो सभी के घर पे ये होता है कि सभी जब सुबह उठते हैं तो हम सब ही लाइक हमारे परमात्मा को याद करते हैं, तो हम सबका ही दिन वहीं से ही शुरू होना चाहिए
0: जी,
1: ताकि हम उनको थैंक्स करें कि हाँ कि आज का दिन हमारा, आपने बहुत ही अच्छा हमारा स्टार्ट हुआ है
0: जी,
1: और कल का दिन बहुत अच्छा गया, चाहे कुछ भी गया हो, लेकिन कल का हमारा दिन बहुत अच्छा गया
0: जी,
1: कि
0: जी, जी।
1: हमें बहुत हिम्मत मिली कि हमने लाइक चीजों के साथ डील किया, और हमें आज भी हिम्मत देना कि हम चीजों के साथ डील करें और बहुत ही हमारा अच्छा दिन जाए
0: जी। जी नहीं, बहुत ही बढ़िया चीज कही परनीत जी। जैसा भी आपका कल गया हो, कल का आज पे कैरी फॉरवर्ड ना करें, नया दिन नया स्टार्ट कीजिए। जैसे भी हुआ, जो भी हुआ, भूल जाए कल से क्या करना है परनीत जी, कल से जो हुआ है, कल में जो भी हुआ हो, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, बहुत ही अच्छा हुआ है, बहुत ही बुरा हुआ है, उसमें से एक सीख लेके आगे चलनी है।
1: हाँ जी, हाँ
0: राइट
1: जी।
0: जैसे आई थिंक हमन जी हमेशा कहते हैं कि हर दिन आप 1% इम्प्रूवमेंट आप में लानी चाहिए
1: जी।
0: इम्प्रूवमेंट आएगी कैसे? इम्प्रूवमेंट आएगी जो भी आप दिन में करते हो, देखते हो, उसमें सीखते हो, वो इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ते चलो
1: जी जी जी जी
0: राइट। तो परनीत जी, आप आज का दिन शुरू हो चुका है, मैं अपने जो लिसनर्स है

0: 416-477-2040, तो ये नंबर पे लाइव भी सुना जा सकता है। नंबर मैं एक बार फिर बोलता हूँ, 416-477-2040। और सबसे बढ़िया चीज, अगर आपको हमसे बात करनी है तो कौन सा नंबर है पनी जी? 905-673-3337, 905-673-3337।
1: हाँ जी हाँ जी, हम तो फिर पंजाबी च बोले हैं ना।
0: मैंने वही कहा कि मुझे पंजाबी आती नहीं है, थोड़े थोड़े वर्ड्स आते हैं, मैं कोशिश करता हूँ।
1: जी जी जी, जरूर जरूर जी, कोई बात नहीं, आप हमारे साथ रहोगे, आपको पंजाबी सिखा देंगे हम।
0: अमन जी के साथ रह रहे के मैं आई थिंक 50% पंजाबी समझ लेता हूँ।
1: हाँ,
0: अभी 50% बोलने की टाइम है।
1: जी जी जी जी,
0: हाँ जी। चलो आज की जब हमारे लिसनर्स कहाँ कहाँ पे, चलिए जी, एक चढ़दी कला का मैसेज तो बनता है जी। आज हमारे साथ परनीत जी है, आज तक अपना जो सफर है वो रहेगा 10 बजे तक। अच्छी अच्छी बातें करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, कुछ अपने एडवर्टाइजर्स आएंगे उनसे कुछ डीले लेंगे, कुछ मजेदार बातें करेंगे जी। तो जुड़े रहिए 10 बजे तक, और स्टूडियो पे आप हमें हमारे साथ बात कर सकते हो जी। नंबर है 905-673-3337 पे, 905-673-3337। तो जल्दी से कॉल करिए और हमें एक चढ़दी कला का मैसेज दीजिए। हमारी आज टीम साथ नए टीम मेंबर जुड़ चुके हैं, तो उनको भी हमको एक बूस्ट चाहिए, एक बैकअप सपोर्ट चाहिए जी फैमिली की तरफ से। क्यों पनी जी?
1: जी जी जी, जरूर जी, जरूर।
0: चलिए जी, पनी जी, मेरे काफी एक दो तीन सवाल है
1: जी।
0: उससे पहले मैं जो भी लिसनर्स है उनके लिए ना एक छोटे सा गाना लगाना चाहता हूँ, जिससे एक थोड़ा सा एक एनर्जी बढ़े
1: जी, जी।
0: राइट, ये भी मतलब मैं पंजाबी गाना है ऑब्वियसली। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो भी मुझे अच्छे गाने लगते हैं मैं बार बार सुनने की कोशिश करता हूँ, और उससे भी वर्ड्स, और मतलब आप मुझे कुछ उसमें से सीख मिलते तो मुझे बताइए प्लीज।
1: जी जी जी, जरूर जरूर।
0: तो ये आ रहा है आपके लिए।

0: पन्नी जी, ये गाना आई थिंक मैं काफी बार सुन चुका हूँ। जो मुझे समझ में आया ये मैं बताता हूँ, टेंशन लेके करना क्या है, ये तो बड़े बड़े राजे मर गए।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल जी, सही, जी। सही ट्रैक पे हैं अभी आप हमारे साथ पंजाबी के लिए।
0: नहीं चलो जी, बढ़िया है जी। नहीं, टेंशन लेना नहीं है, जिंदगी को जो भी चैलेंज आते हैं हंसते हंसते उनको लेना है, और उनको हंसते हंसते वो सॉल्व तो नहीं होते, बट एक सॉल्व करने के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है।
1: जी जी जी जी जी,
0: ठीक है पनीत जी। चलिए आज के दिन के लिए आज कुछ बोल रहे थे आप, मुझे कुछ सवाल पूछना है जी।
1: हाँ जी, हाँ जी। सो हमारे सबकी लाइफ
0: पंजाबी में ही आती है,
1: पंजाबी में ही आती है जी। तो अपने सारे अंदर लाइफ दे विच एक एक बॉस हुंदा, अपने काम ते भी बॉस हुंदे आ, अपने आपा किते भी जाइए आपां नूं एक बंदा लीड कर रहा हुंदा। सो मेरा सवाल ए है कि थोड़े घरे तुहाडा बॉस कौन आ?
0: ओह माय गॉड, सबको पता है जी।
1: मैं सब तो ज्यादा एक्सपेक्ट करूंगी कि साडे जेडे मेल लिसनर्स ने ओ सानू कॉल करके दसनगे कि तुहाडे घरे तुहाडा बॉस कौन आ। पर कॉल तो पहला पंकज जी तुसीं दसो सानू कि तुहाडे घरे तुहाडा बॉस कौन आ
0: जी। मेरे घर पे ये तो संत, तो अभी आप रेडियो पे इतना मुश्किल सवाल पूछ रहे हो जी।
1: चलो,
0: लेकिन नहीं, हमारे घर में नहीं, हमारे घर में सिनेरियो थोड़ा अलग है। हमारे घर में जो बॉस है वो टीवी है।
1: टीवी
0: जी,
1: ये कौन सा आंसर हुआ?
0: जी जी, जिसके हाथ में रिमोट है वो टीवी का रिमोट है, वो बॉस है।
1: देखिए

0: टीवी की बात ही कर रहे हैं ना हमारे साथ.
1: बिकॉज मैं सीधा जवाब नहीं दे सकता हूँ.
0: जी जी जी जी जी
1: क्योंकि क्या होता है कि मतलब काफी लोग होते हैं, किसी के घर में होता है कि हस्बैंड बॉस होता है, किसी में बीवी वाइफ बॉस होती है. यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वाइफ बॉस होती है वैसे तो, बट लेकिन फिर भी एक टीवी एक बॉस होता है.
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, टीवी कैसे बॉस हुआ पंकज जी, आप मुझे ये बताएं.
1: देखिए जी, आप जब थके हारे घर पे चले जाते हो, बैठते हो, बात करते हो, राइट, तो उसके बाद आपको कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, राइट. तो अपने साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं जी. चलो मैं अपने एक कॉल ले लेते पहले. हेलो राजविंदर जी. आई थिंक कॉल डिस्कनेक्ट हो गया. कॉल्स जस्ट एक लिसनर जो भी कर रहे हैं जी, कॉल जब आप करेंगे तो एक जस्ट होल्ड करना जी, 10-15 सेकंड आप हम आपकी कॉल्स उठा लेंगे जी. चलिए जी. हाँ पनीर जी, तो मैं ये कह रहा था जब आप थक के जाते हो घर पे, आप बैठते हो, मतलब आपको फिर एक रिलैक्सेशन के लिए टाइम होता है, फिर एक आपका मनपसंद शो होता है वो आपको देखना होता है, तब अगर इसीलिए वो कहते हैं जिसके पास रिमोट होता है तब वो बॉस हो जाता है.
0: तो वही है ना, जैसे कि हमारे लिसनर्स का हमारा उनका फेवरेट शो है हमारा रेडियो वाला.
1: जी जी जी.
0: तो वैसे ही तो आप हमें जल्दी जल्दी कॉल करें और आप बताएं कि आपके घर पे बॉस कौन है. मैं पंजाबी च भी दस दूं तुहानू सारिआं नूं कि तुसीं सानूं कॉल करो ते तुसीं सानूं दसो कि तुहाडे घरे तुहाडा बॉस कौन आ. जरूरी नहीं कि उह घर दा मैंबर ही होवे, जिवें कि पंकज सर दे घरे उहनां दे घरे उहनां दा टीवी बॉस आ. ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਸ ਕੌਣ ਆ.
1: जी बॉस. और एक मजेदार चीज है, कभी कभी ना घर पे वो हर रोज तो नहीं होता लेकिन कभी कभी बच्चे भी बॉस बन जाते हैं.
0: बच्चे कैसे बॉस बनते
1: जी,
0: हैं
1: जी? बच्चे जब क्या कहते हैं उनको, फॉर एग्जांपल उनकी बर्थडे था, बर्थडे आया, बर्थडे को उन्होंने आपने गिफ्ट मांगा था और आपने कुछ गिफ्ट भूल गए लाना, तो फिर बच्चे बॉस बन जाते हैं और फिर वो बॉस जब बॉस जो कहता है फिर वो करना पड़ता है, राइट.
0: तो पंकज जी आपको बॉस की बात पहले माननी चाहिए थी.
1: जी जी, इसीलिए कहता हूँ कि बॉस अलग अलग बॉस होते हैं जी. राजविंदर जी सत श्री अकाल जी, आप ऑन एयर हो.
2: सत श्री अकाल जी. ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਘਰ ਬੌਸ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਆ
1: ਜੀ. ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਜੀ.
2: ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਹੀ ਘਰ ਚ ਬੌਸ
1: ਫੋਨ.
0: ਫੋਨ
1: ਓ ਜੀ
0: ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ. ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਕਹਿਤਾ ਜੀ.
2: ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਜਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੌਸ ਆ ਘਰ ਜੀ.
0: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਫੋਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬੌਸ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ. ਪਹਿਲਾ ਬੌਸ ਜਿਹੜਾ ਜੇਬ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ.
2: ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਕੁੱਕ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬੌਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ.
0: ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 100% ਐਗਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ.
2: ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ.
0: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ.
1: ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫਾਰ ਕਾਲਿੰਗ ਜੀ. ਚਲੋ ਆਪ ਬਾਕੀ ਲਿਸਨਰਸ ਵੀ ਆਪ ਹਮੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬਤਾਈਏ ਜੀ, ਆਪਕੇ ਘਰ ਮੇ ਬੌਸ ਕੌਣ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਤੇ, ਕੋਈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਿੱਸਾ. ਪਨੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਊਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਤੇ ਆਪਣੇ ਲਿਸਨਰਸ ਕਿਆ ਕਹਿਤੇ. ਚਲੋ ਕਾਲ ਕੀਜੀਏ ਜੀ 905-673-3337 ਪੇ, 905-673-3337. पे आप कॉल करके आपके व्यूज जरूर शेयर कीजिए, हमें भी पता चले कि भाई बॉस एक्चुअली होता कौन है. बिकॉज हमको तो पता है आप ऑफिस में जाते हो, ऑफिस में एक ही बॉस होता है, लेकिन घर पे आपका असली बॉस कौन है.
0: जी जी जी जी जी.
1: जैसे टीवी हो गया, टीवी है, बीवी है. चलिए पनीर जी.
0: और बीवी है, वाह पंकज जी वाह.
1: जी जी जी. पनीर जी एक बहुत ही मजेदार किस्सा है. एक बार क्या हुआ कि मैं मतलब जैसे काम पहुंच के घर पे चला गया था, राइट. जो मैं आई थिंक जो हम टॉपिक डिस्कस है उसके रिलेटेड ही है. जैसे फिर मैं घर पे गया, तो अब घर पे जाते जाते नो होता है कि बच्चों का होमवर्क चल रहा था, सारा कुछ चल रहा था, सारा घर पे यू नो सारे अपना अपना काम चल रहा था. मैं जाके बैठ गया तो अचानक सारे मुझे देखने लगे. मैं बोला क्या हुआ, मुझे पता ही नहीं चला क्या चल रहा है. वो सारे मेरे पास देख रहे. बोला डैडी आप आ गए? हाँ आ गया. बोला क्या हुआ? पता नहीं. तो मतलब फिर मैं जो 2 मिनट बैठा, मैंने पानी पिया, मैंने सोचा ओ माय गॉड, मुझे मेरे बेटे ने मुझे कुछ बोला था लाने के लिए और मैं लाना भूल गया. और तब बज चुके थे जी 8:30, सारे शॉप्स ऑलमोस्ट बंद होने पड़े थे. तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं बच्चों उनके कुछ प्रोजेक्ट के लिए कुछ चीजें लानी थी, मैं भूल गया. तो जल्दी से मैं निकला, भाग के गया और दौड़ के जो भी चीजें थी वो लेके आया. और फिर भी एक चीज में फिर भी मिस कर गया.
0: क्या
1: मतलब एक छोटी सी चीज थी वो मैं मिस कर गया और फिर नेक्स्ट डे सुबह सुबह मुझे जल्दी उठ के फिर से जाना पड़ा। तो इसलिए होता है कि जब मतलब एक बार बॉस आपको ऑर्डर दे दे तो उसके बाद आप जो भी चीजें लानी है वो भूल जाते हो।
0: जी जी जी वो हम होता है ना कि हम पैनिक हो जाते हैं।
1: जी जी जी तो पैनिक में फिर हाँ तो आप जब याद रख के लाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब भी ऑफिस में बॉस और घर का बॉस दोनों की प्रॉपरली आप उनको मैनेज करके चलना चाहिए।
0: जी जी जी अगर आपको घर पे शांति से रहना है चाहे आपके बच्चे हों।
1: जी जी
0: अगर बच्चे बॉस हैं घर में तो खास तो अगर वो बॉस हैं तो आपको लाइक करना ही पड़ता है जो भी वो चीजें कहें तो उनको करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि हम उनकी सारी लाइक जिद पूरी करें लेकिन जो जो जायज जिदें होती हैं क्योंकि वो तो बच्चे हैं वो नहीं समझेंगे तो हमें समझना पड़ता है उस चीज को तो अपन फिर उन्होंने गलत मननिया ही पैदा।
1: जी जी जी बहुत बहुत बड़ी बात है। चलिए जी चलते हैं जी शो के आगे। और पनीत जी मेरा आप और कुछ सवाल पूछने की बात कर रहे थे जी। आज हमेशा मैं सवाल लेता हूँ आज दो तीन आप सवाल लेके आते हो।
0: जी जी जी सो जो असि छोटे होंगे सी पंकज
1: जी जी
0: सो साडिया जेडिया दादिया नानिया होंदिया सानू बातां सुनांदियां होंदियां सी।
1: जी जी
0: सो मेरा मेरी दादी नाल बहुत प्यार हुंदा सीगा सो हले भी हैगा मेरा मेरी दादी नाल बहुत प्यार। सो मेरी दादी यूजुअली सानू बात पाउंदे हुंदे सी ते सानू बुझण लई कहंदे हुंदे सी। सो एक उहनां दी बात जो उहनां ने सानू हमेशा पुछनी ते उह कहंदे हुंदे आ कि तूं चल मैं आया। चार शब्दां दी आ इह तूं चल मैं आया। सो सानू जवाब दो जल्दी जल्दी के एदा जवाब की होगा ते जिदा भी सही जवाब होया उनु पंकज जी दसो फिर आपा की प्राइस दईए आज।
1: जी आज चलो आज परनी जी अपने स्पेशल गेस्ट आए हैं नजारा से तो परनी जी मैं नजारा से ही आप मतलब कुछ बोलूंगा नजारा की टीम से ही आप उनको क्या मैं सोचता हूँ आज उनको पास्ता खिला देते हैं।
0: जी
1: जी
0: ये तो आपने वो बात कर दी ना कि हाँ नेकी और पूछ जी जी जी जी जरूर
1: जी।
0: तो आज हम उनको नजारा पे पास्ता खिलाएंगे।
1: जी जी
0: और खासकर हमारा अल्फ्रेडो पास्ता जो कि हमारा फेमस है।
1: जी जी
0: जो कि हमारा नंबर वन हमारे कस्टमर्स जो हैं वो खाते हैं हमारे पास आके और हमारा हाईली सोल्ड जो आइटम ऑफ आर मेन्यू जो हमारी स्पेशलिटी है अल्फ्रेडो पास्ता हो गया अल्फ्रेडो मोमोज हो गए तो हम आपको वो खिलाते हैं आज।
1: जी जी जी चलिए जी मैं अपने कॉलर्स आए उनसे कॉल ले लेते जी। हेलो सत श्रीकाल जी आप ऑन एयर हो राजविंदर जी।
2: हाँ जी बुआ जी ये जितना दरवाजा कह रहे चल से मैं आया।
0: वाह जी वाह ओके जी असि थोड़ा आंसर लिख लेने ते फिर असि शो दे एंड ते दसांगे कि कौन विनर होया।
2: ठीक है जी
0: हां जी हां जी ते असि थोड़ा आंसर लिख के रखदे आ ते फिर असि शो दे एंड ते अनाउंस करांगे कि कौन विनर आ।
1: जी आप सुनते रहिए जी रेडियो
0: रेडियो आवाज
1: आपका पसंदीदा शो। उसके बाद अपने नेक्स्ट कॉलर है जी गुरदीप सिंह जी।
3: सत श्रीकाल जी
0: सिर्फ पंजाबी समझ आने माझे मालवी वाली पंजाबी नहीं समझ
1: आने
0: हां जी हां जी डोर
1: ओके जी नहीं चलो थैंक यू सो मच आपके आंसर के लिए जी जुड़े रहिए हमारे साथ हम जल्दी अनाउंस करेंगे जी किसको मिलने वाला है जी पास्ता आज नजारा की टीम से। उसके साथ नेक्स्ट कॉलर अपने हैं जी 8013। सत श्रीकाल जी
4: मैं कैमरे तो बोल रही हूँ जरा से क्वेश्चन किया ना।
1: जी जी
4: उसका आंसर डोर है।
1: डोर है
4: जरा अभी टॉपिक क्या है जरा अभी टॉपिक चल रहा ओहो है कि करता जरा बॉस है फोन तो एकदम परफेक्ट है लेकिन जरा तुझे कहने बच्चे लेकिन जो कोई ना कोई चीज मांगते हैं तो वो साड़ी ड्यूटी बनती है उन्होंने जाके दे पर वो बॉस ना बन जाते बॉस तो वही बंदा होंगे जरा घर में चला सकता घर में चला वाला घर में चला वाला जरा घर के बीच रहने पर जेता है सिर्फ मियाँ बीबी है तो आदमी होगा क्या और
0: कोई
4: फैमिली फुल हैगी है जिस तरह पेरेंट्स भी ना देंगे है तो डिपेंड करता है कि हाँ भी कई बार तू भी बॉस बन जाती है वो भी डिपेंड करता उस
0: जी जी जी जी जरूर असी थोड़ी गल ना पूरे एग्री कर दे पर ओही गल है ना जी गड्डी दा ड्राइवर एक हुंदा ते नाल कंडक्टर होना भी बहुत ही जरूरी है। समझ गए
4: ना इस करके क्योंकि पता की गल की है जेड़ा कंडक्टर है ओही खास करके चलांदा हुंदा गड्डी गड्डी चलाउणा ड्राइवर ता नहीं हुंदा ड्राइवर नहीं चलाउणा ड्राइवर से गड्डी चलाउणा जरूर पर ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ।
0: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ।
4: ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਬੌਸ ਆ ਜਾਂ ਨੂਨ ਬੌਸ ਆ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਬੌਸ ਆ।
0: ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਫੀਮੇਲ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੌਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਇਨ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦ ਲੇਡੀ ਬੌਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ।
4: ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਕਿਤੇ।
0: ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ?
1: अमन जी, अमन जी आई थिंक आप वेरी सून अपने साथ ज्वाइन होंगे, उनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है तो वो थोड़ी रेस्ट कर रहे हैं, तो वापस आ जाएंगे जल्दी।
0: हाँ जी, जी बहुत ही जल्द वो अपने शो से दोबारा वापस आएंगे, अपने नाल दोबारा गलबात करेंगे। हाँ जी हाँ जी, बस थोड़ी दुआवां नाल बहुत ही ज्यादा जल्दी रिकवर कर रहे ने ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼।
4: ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੈਥ, ਕੈਮਰੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ
1: ਹਾਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੇ ਬੋਲਿੰਗੇ ਜੀ?
4: ਰਜਿੰਦਰ,
0: ਰਜਿੰਦਰ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੈਥ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ
1: जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। और उसके साथ अपने साथ जुड़ चुके जी तेग बहादुर जी। तेग बहादुर जी, सत श्री अकाल, कैसे आप?
5: ਬਾਂਕਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
1: ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ,
5: ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ।
1: ਓਕੇ, ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਬੜੀਆ ਜੀ।
5: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੌਸ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਚ ਮੂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖੀ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਸਾਸਕ ਦੀ ਬਹੂ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ।
0: ਜੀ ਜੀ ਜੀ,
5: ਫੇਰ ਬੌਸ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ।
1: थैंक यू सो मच तेग बहादुर जी, हौसला अफजाई के लिए। और तेग बहादुर जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, और बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने, थैंक यू जी। और अपने साथ जुड़ चुके जी हनीफ जी। हेलो
6: जी, आंसर है जी धुआं।
1: धुआं
6: धुआं
0: धुआं,
1: ओके, ये थोड़ा अलग आंसर है जी। ओके, हनीफ जी की कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी है जी, बट लेकिन धुआं काफी सोचने वाली बात है। नेक्स्ट कॉलर है जी लखवीर सिंह जी। हेलो
7: जी, सत श्री अकाल। पहला तो चलो 5:30 AM दे श्रोतियां नूं
1: जी सत श्री अकाल जी।
7: हां जी, ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ
1: ਜੀ। ਜੀ,
7: ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਬੌਸ ਆ।
1: ਓਕੇ ਜੀ ਜੀ,
7: ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨੀ ਹਿਲਦਾ ਕੋਈ ਵੀ।
1: ਓਕੇ,
7: ਕੱਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕੱਲ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਾਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ।
1: ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ
0: ਜੀ, ਵਾਹ।
7: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ,
0: ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ।
7: ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨੀ ਹੈਗਾ।
0: ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ 100% ਅਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
1: ਔਰ ਜੀ, ਹਮਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਸਵਾਲ ਕਾ ਜਵਾਬ?
7: ਉਹਦੇ ਜੀ ਦੋ ਆਨਸਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਡੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ
1: ਜੀ ਜੀ,
7: ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਈਅਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਮੈਂ ਆਇਆ।
1: ਓਕੇ
0: ਓਕੇ,
1: ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੂਨੀਕ,
7: ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਲ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ।
0: ਜੀ
1: ਚਲੋ, ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਯੂਨੀਕ ਆਨਸਰ ਹੈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਸੋਚ, ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ, ਬਹੁਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰੇ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਜੀ।
0: ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ
1: ਜੀ ਜੀ,
0: ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ।
1: ਨਹੀਂ ਚਲੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫਾਰ ਕਾਲਿੰਗ ਜੀ, ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਆਵਾਜ਼ 5:30 AM। ਪਨੀਰ ਜੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਾਫੀ ਯੂਨੀਕ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਿਸਨਰਸ ਕਾਫੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਹੇ।
0: ਚਲੇ
1: ਜੀ ਪਨੀਰ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੇ ਰਿਪੀਟ ਕੀਜੀਏ।
0: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਆਪਣੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ
1: ਜੀ ਜੀ ਜੀ,
0: ਸੋ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਸ ਕੌਣ ਆ
1: ਜੀ,
0: ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬੌਸ ਕੌਣ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚੱਲ ਮੈਂ ਆਇਆ।
1: ਜੀ
0: ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ AM 530 ਰੇਡੀਓ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਨੰਬਰ ਪੰਕਜ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ
1: ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਕੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 905-673-3337 905-673-3337 ਪੇ ਆਪ ਹਮੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਤੇ ਔਰ ਆਪਕੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਗਲਤ ਰਾਈਟ ਹੈ ਰੋਂਗ ਹੈ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਜਸਟ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕੀਜੀਏ ਔਰ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰੈਕਟ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰੈਕਟ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਬਾਤੇ ਕੀਜੀਏ ਔਰ ਚਲੇ ਸੁਣਤੇ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਤੇ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਪਨੀ ਜੀ ਹਮ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਜੋ ਵੀ ਲਿਸਨਰਸ ਕਾਲ ਕਰਤੇ ਹਮ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਸਪੌਂਸਰਸ ਹੈ ਵੋ ਵੀ ਹਮ ਕਹਿਤੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਤੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹਮੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਲ ਕਰਤੇ ਔਰ ਹਮਾਰੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਤੇ ਰਹਤੇ ਹੈ ਜੀ
0: ਜੀ ਜੀ
1: ਚਲੀਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਆ ਗਏ ਹੈ ਜੀ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ
8: ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਰਛਾਵਾਂ
0: ਪਰਛਾਵਾਂ ਚੱਲ
8: ਮਾਇਆ
1: ਓਕੇ
0: ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਪੰਕਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਪੰਕਜ ਜੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ
1: ਪਰਛਾਵਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੈਡੋ
0: ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਲੱਕੀ ਵਿਨਰ ਕੌਣ ਆ
1: ਜੀ ਜੀ
0: ਜੀ
1: ਤੋਂ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ
9: ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ
1: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ
9: ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾ ਮੇਨ ਮੋਮ ਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡੋਰ ਆ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਵੀ ਨੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਡੋਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚੱਲ ਮੈਂ ਆਇਆ
0: ਜੀ ਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ
1: ਕਾਫੀ ਬੜੀਆਂ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਆਪਕੇ ਆਨਸਰ ਕੇ ਲਈ ਸੁਣਤੇ ਰਹੀਏ ਜੀ ਸ਼ੋ ਆਪਕੋ ਆਪਣਾ ਵਿਨਰ ਹਮ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਜੀ 4465
0: ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਮੈਮ
10: ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਾਲਾ
0: ਮਾਲਾ ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਵਿਨਰ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਕਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਲਫਰੈਡੋ ਪਾਸਤਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਨਰ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਲੱਕੀ ਡਰਾ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ
1: ਜੀ ਜੀ
0: ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ
1: 8981
11: ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ
1: ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ
0: ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ
11: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਨਸਰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ
1: ਜੀ
11: ਚੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
1: ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਤਾਏਂਗੇ ਪਲੀਜ਼
11: ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
1: ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਾਂ ਸੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ ਭਾਜੀ ਬ੍ਰਾਮਟਨ ਸੇ ਚਲੋ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਆਪਕਾ ਹਮਨੇ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾ ਜੀ ਵੋ ਵੀ ਆਨਸਰ ਦੀਜੀਏ ਕਿ ਆਪਕੇ ਘਰ ਮੇ ਬੌਸ ਕੌਣ ਹੈ
11: ਬੌਸ ਵਹਾਂ ਪੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ
0: ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋ
11: ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਸਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ
0: ਓਕੇ ਜੀ ਪਰ ਗੱਲ ਐਦਾਂ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਸਿਰ ਪਾਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ
11: ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾ ਲਓ
1: ਪਾਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੀ ਬਾਤ ਆਪਕੋ ਬਤਾਤਾ ਹੂੰ ਜੈਸੇ ਆਪਣਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਮੇ ਅਹੁਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ
0: ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਗੱਲ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਪੰਕਜ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
1: ਜੀ ਜੀ ਜੀ
0: ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ
11: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਅਮਨ ਜੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ
1: ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਵੋ ਹੈ ਸੁਣ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਉਨਕੋ ਰੈਸਟ ਕੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ जी जल्दी आ जाएंगे स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे जी।
11: ठीक है जी, ठीक है,
1: चलो जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। या तो भी जो भी लिस्टर से अपने साथ जो जुड़ते रहिए जी। पनीर जी का सवाल है तू चल मैं आई, इसका सवाल उसका जवाब क्या है?
0: हाँ जी हाँ जी। और पंकज जी फिर तो से एक बार साड़ी हिंदी पंजाबी कंफ्यूज कर गई।
1: ओके, कंफ्यूज कर दी।
0: तू चल मैं आया।
1: ओके, मैं आया। ठीक
0: हाँ जी, तू चल मैं आया।
1: पन्नी जी जब मैं कहता हूँ ना मेरा बेटा मतलब कुछ काम करते हैं, मैं जब मैं बिजी हूँ उसको मैं बोलता हूँ तू चल मैं आया, और मैं कभी जाता ही नहीं हूँ। नहीं बिकॉज उसका क्या थोड़ी हौसला है, वो कहता है कि चलो मैं डैडी मेरे साथ चलो मेरे साथ चलो, मैं बोलता हूँ नहीं तू चल मैं आया, मतलब तू उसको अकेले थोड़ा सा बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ, मैं वो एंगल से सोचता हूँ। जी जी चले जी, स्टूडियो के घड़ी में हो चुके हैं जी 9:35 और अपना साथ काफी मजेदार बातें हो रही है जी। आप भी कहीं से भी सुन रहे हो जी हमें, आप कॉल कीजिए 905-673-3337 पे आप हमें कॉल कीजिए, और आपके जो भी विचार है सांझे हमारे साथ सांझे कीजिए। सही बोला जी,
0: जी। हाँ जी हाँ जी, एक तो हेल्पिंग वर्ब इधर उधर होंगे
1: और
0: चलो कोई गल नहीं, आप सही करवा देंगे, अपने लिसनर सानू कॉल करके सही करवा देंगे, पंकज जी साडे नाल रह के
1: जी जी
0: असीं तुहानू 9 दे विचों 8.5 बैंड स्कोर तां दे ही सकदे आ मैनू लगदा।
1: जी जी जी हां जी, चलिए जी नेक्स्ट अपने कॉलर है जी। हेलो अमनदीप जी, सत श्री अकाल जी।
12: हाँ जी सत श्री अकाल जी, और ठीक हो सब?
1: हाँ जी बढ़िया जी, आप कैसे हैं?
12: हाँ जी हाँ जी बढ़िया जी।
1: हाँ जी कहाँ से बोल रहे हैं आप?
12: जी मैं बोल्टन से बोल रहा हूँ।
1: ओके बोल्टन से बोल रहे जी। अमनदीप जी चलिए, आप अपने हमारे साथ कॉल किया है तो हमारे दो सवाल के जवाब दीजिए।
12: हाँ जी हाँ जी
1: जी, अपने एक पहला सवाल जो था कि आपके घर में आपका बॉस कौन है?
12: जी मेरे घर में तो मतलब पेरेंट्स ही
1: हैं,
12: मम्मी पापा।
1: पेरेंट्स है, ओके, क्या बात है, सबसे बढ़िया बात है।
0: जी जी जी जी
1: अमन जी, आपके आवाज से यू नो आपकी जो भी विनम्रता है वो झलक रही है जी। आप मतलब आपके पेरेंट्स ने आपको काफी सारा अच्छे से यू नो क्या कहते हैं, अमन जी हमेशा कहते हैं कि साहू कहते वो मुझे नहीं पता
0: क्या ठेठ पंजाबी का शब्द तुसी बोल रहे हो।
1: नहीं मैं इसे सीख रहा हूँ जी, तो वैसे आई थिंक काफी आपको अच्छी सीख मिली है। और अमन जी दूसरा हमारे जो क्वेश्चन का सवाल है वो भी दे दीजिए, तो पन्नी जी मैं इसमें गलती कर दूंगा।
0: हाँ जी हाँ जी, सो साडा सवाल सीगा जो काफी सारे लिसनर्स ने सानू कॉल करके सानू जवाब दिता, सो साडा सवाल सीगा कि तू चल मैं आया।
12: हाँ जी हाँ जी, मैं सुन रहा था जी, वही डोर दरवाजा आंसर।
1: डोर
0: दरवाजा जी जी जी देखो पंकज जी, एक गल तो आपां नूं मन्ननी पैणी, अपने लिसनर्स अपना इन्ना ध्यान रखदे ने, आपां सिर्फ एक वार अनाउंस कीता कि तुसीं प्लीज माझे मालवे वाली आपां मतलब बोली ना मिक्स करिए, माझे मालवे दुआबे वाली, क्योंकि ऐसे काफी शब्द इदां दे हुंदे आ कि असीं एको चीज नूं काफी नावां नाल बुला लैने आ जिहड़े पंजाबी दे विच हुंदे आ ना, ते सारे ओह तुहानूं तुहाडा इन्ना खास ख्याल रखदे ने ना
1: कि
0: ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ।
1: ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਅਮਨਦੀਪ ਦੀਪ ਜੀ ਫੋਰ ਕਾਲਿੰਗ, ਔਰ ਆਪਕਾ ਦਿਨ ਅੱਛਾ ਜਾਏ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।
12: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ,
1: ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। पन्नी जी, और एक मतलब जैसे कहते ना जो भी लिस्टनर्स इतना मुझे प्यार दे रहे हैं, तो मैंने एक चीज देखी कि मतलब पंजाबी लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है।
0: हाँ जी हाँ जी
1: जी, और मतलब नॉट ओनली पंजाबी जो भी अपने लिस्टनर वैसे काफी क्रॉस कम्युनिटी से भी हमें लोग कॉल करते हैं, मतलब सच में उनका दिल काफी बड़ा है, और मैं उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू देम, और मुझे एक्सेप्ट करने के लिए, और मेरा नाम भी पंकज पंजाबी रखने के लिए जी।
0: जी जी जी,
1: अपने साथ जुड़ चुके हैं जी जसवंत गरेवाल जी।
13: हेलो जी,
1: सत श्री अकाल जी भाजी।
13: बस ठीक है, मैं सॉरी ब्रोकन हिंदी है।
1: नहीं चलेगा जी।
13: तो जो ट्रक एंड ट्रेलर होता है ना,
1: जी जी,
13: उसको भी कह सकते हैं तुम आप जो तू चल मैं आया, जो ट्रेलर दोने वो असली तो वो है। पंजाब में पता क्या होता है, पंजाब में ट्रॉलियों में लिखे थे तू चल मैं आई
1: जी। ओके,
13: देखो ट्रॉलियों में लिखा होता है, क्योंकि मैं तो आई 56 ईयर हो गए इधर आए को इस कंट्री में।
1: ओके जी, ग्रेट ग्रेट,
13: क्योंकि हमारे याद आया भी उसको लिखा होता था हमारे बाबे वगैरह दादिया ने।
1: जी जी,
13: जो तुम यानी पंजाबी लिखा था तू चल मैं आई।
1: ओके
0: जी,
13: क्योंकि डिफरेंट है थोड़ा जा स्टोरी वॉलेट, जी दरवाजा कह देने दरवाजा जी एक होगा, एक तो पहला अंदर आएगा फिर ही आ जाएगा ना, इन आउट होगा।
1: जी जी जी जी जी, है ठीक, काफी यू नो लॉजिकल आपने आंसर दिया। अभी मुझे भी जो भी आप कह रहे हो
13: ना, रहते हैं ना जो कंटिन्यूस पीछे चलता ही रहता है, दो जो आगे वाला चलेगा तो पीछे वाला आएगा।
1: जी जी जी जी, आई थिंक बहुत ही सोच समझ के आपने आंसर दिया है जी। जसवंत जी बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग,
13: अप्रिशिएट,
1: थैंक यू। उसके साथ नेक्स्ट कॉलर अपने साथ है जी, राधा जी।
14: हेलो जी, नमस्कार।
1: नमस्ते जी राधा जी, कैसे आप?
14: मैं बिल्कुल ठीक, आप भी ठीक होंगे?
1: हाँ जी, बढ़िया।
14: तो मेरे हिसाब से मैंने जो पुरानी कहानी सुनी थी, एक पता नहीं आप लोग हंसी मत, मैं जवाब देने लगी हूँ।
1: नो प्रॉब्लम।
14: पता नहीं ये सही है कि नहीं, मैंने बाकियों के भी सुन रखे हैं
1: जी।
14: और इसका मतलब जो पुराने टाइम पे कुएं से पानी निकालते थे ना, जो डब्बे से लोहे से बने होते हैं
1: जी,
14: तो उसका एक पंजाबी में और भी नाम है, तो मैं अगर याद आ गया तो बता दूंगी। लेकिन पानी एक भर के आता डब्बा सा ऊपर और दूसरा नीचे जाता, तो मेरे हिसाब से उसको बोलते हैं जो कुएं से पानी निकालते हैं कुएं से।
1: ओके,
14: तो भर के पानी ऊपर नीचे आता है, राउंड सा घूमता है ना वो।
1: जी जी जी, समझ में आया, समझ में आया।
14: हाँ, एक डब्बा भर के ऊपर आ गया, दूसरा भरेगा तब आएगा ना।
1: हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया जी।
14: इसके पीछे स्टोरी है, कोई उसमें बोलते हैं कि तू चल मैं आया।
1: ओके, नहीं नहीं, थैंक यू सो मच जी, बहुत ही मतलब आपने सोच समझ के आंसर दिया है, तो थैंक यू सो मच राधा जी फॉर कॉलिंग। और सुनते रहिए जी अपना रेडियो शो, रेडियो आवाज 530। पनीत जी, अभी जब बात आती है जी रेस्टोरेंट की और नजारा की, आपके टीम से जी अपने साथ जुड़ चुके हैं जी चनप्रीत जी। चनप्रीत जी, सत श्री अकाल जी, आप ऑन एयर हो।
15: हां जी, सत श्री अकाल जी सारे ने जी।
1: सारे ने जी जी,
15: बहुत ही सोहनी सवेर दे नाल तुसी अज ब्रेकफास्ट करना
1: जी,
15: नजारा ते आके नजारा ते तुहानूं बहुत ही सोहनी एम्बियंस दे नाल पीस ऑफ माइंड जिथे मिलता वा, पीस ऑफ माइंड ग्रीनरी दे नाल भरिया होया रेस्टोरेंट हैगा वा, उत्थे तुसी आओ ब्रेकफास्ट करो। अमृतसरी कुलचे तो लै के चने भटूरे, पहाड़गंज के चने भटूरे, या फिर तुसी कोई परांठे खाने है, कहिंदे कि आराम नाल पीस ऑफ माइंड च बूथ च बह के, प्राइवेट बूथ च बह के खाना वा। कोई तुहाडी फैमिली हैगी, फैमिली नाल आओ, बूथ च बह के डोर बैल लगी हुई है जी, बैल मारनी है ते अपने अटेंडेंट तुहाडे कोल आपे आ जाऊगा, उठ के तुहानू उठा के बुलाण दी लोड़ नहीं हैगी।
1: क्या बात है,
15: पहुंचो नजारा ते। उस तरह अगर कोई केटरिंग हैगी, कोई बर्थडे पार्टी हाल ही है, कोई अपना बेबी शावर, कोई अपनी एंगेजमेंट हैगी है, या कोई भी और प्रोग्राम हैगा तुहाडा, तुसीं चाहुंदे हो घरे, हुण अगे ठंड आ जानी, स्नो पैनी शुरू हो जानी है,
1: उन्हें
15: ही ऑलरेडी ठंड शुरू हो गई है, मतलब शाम नूं काफी ठंड होंदी है। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਛੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਜੇ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਖੁੱਲੇ, ਕਲੀਨ ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰੇ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਕੋਸਟਿੰਗ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਡੀਜੇ ਵਾਲਾ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਡ ਪੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਟੈਂਟ ਲਵਾ ਕੇ ਟੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਪੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 40-50 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈਗਾ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਨੀ 4000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
1: ਜੀ ਜੀ,
15: ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖਰਚੇ ਉਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਛੱਤੇ ਥੱਲੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨੀ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੇ। ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਿਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਲ ਡੈਕੋਰੇਟਿਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6437-633-8878, 647-633-8878 ਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੀਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਜ 699 ਚ ਮੀਡੀਅਮ 3 ਟੋਪਿੰਗ ਪੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਆਉਣਾ ਪੀਜ਼ਾ ਸ਼ੈਫ 13-13 ਤੇ, ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ 699 ਚ ਵੱਜੋਗੇ, 905-451-2600, 905-451-2600 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੀਜ਼ਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਕੇਟਰਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਘਰੇ, 647-633-8878, 647-633-8878 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ।
1: ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਚਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੇਟਰਿੰਗਸ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਮੈਂ, ਤੋ ਆਪ ਲਗੇ ਰਹੀਏ ਜੀ, ਆਪਕਾ ਹਮ ਮੈਸੇਜ ਥੋੜਾ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਮੈਸੇਜ ਆਪਕੇ ਲਈ ਦੇ ਦੇਂਗੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫੋਰ ਕਾਲਿੰਗ। पनीत जी, आई थिंक आपकी चनप्रीत जी ने काफी सारे होते, शायद वो बिजी थे थोड़ा, मैं भी कुछ और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। जैसे चनप्रीत जी ने कहा, बहुत ही बढ़िया एम्बियंस है, प्रॉपर बूथ है, और वहां पे आई थिंक बेल भी लगाई है, जब आप बेल एक दबाओगे तो आपकी प्राइवेसी के लिए जब भी चाहिए तो अटेंडेंट्स आपको आके अटेंड करेंगे। लिमिटेड अभी सर्दियां आगे आ रही है तो आपको बाहर आपके पास बैकयार्ड है, बैकयार्ड में करने के लिए सब टेंट लगाना पड़ेगा, हीटर लगाना पड़ेगा, फिर काफी सारी चीजें यू नो स्नो जब आती है तो भी ज्यादा मतलब पंजाबी का वर्ड यूज करता हूँ खिलारा पड़ आ जाता है राइट तो ये सारी चीजें आपको मतलब अवॉइड करनी है। तो एक वन स्टॉप शॉप है जी आपका नजारा, आई थिंक मैं जब भी आता हूँ तो मुझे भी उसका एम्बियंस काफी बढ़िया पसंद है, जिस तरह से आपने डेकोरेशंस की है, लाइटिंग्स की है, जिस तरह से जो सिटिंग अरेंजमेंट्स है वो मुझे सबसे अच्छी लगती है और एक कोजी एनवायरनमेंट मिलता है, बिकॉज बाहर ठंड है, आप घर पे अरेंज करने का इतनी सारी चीजें अरेंज करनी पड़ेगी, उससे अच्छा आप नजारा पहुंचिए, सारी वहां पे अरेंजमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं, आपको डेकोरेशंस भी मिनिमलिस्टिक करनी पड़ेगी, अगर नहीं भी करनी है तो उनकी आपकी स्टेज ऑलरेडी है राइट
0: जी जी
1: जी जी, सो सारा बना हुआ है।
0: और उसके अलावा पंकज जी मैं आपको और हमारे सारे लिसनर्स को एक और बात बता दूं।
1: जी जी
0: हमारे पास एक वीकडे स्पेशल डील चल रही है
1: जी जी
0: 30 पीपल की गैदरिंग पे, 30 पीपल की गैदरिंग हम सिर्फ करते हैं $1,000 में
1: जी जी,
0: और $1,000 में आपको सब कुछ मिल जाता है, आपको पूरा सिटिंग अरेंजमेंट मिल जाता है
1: जी,
0: आपको अनलिमिटेड फूड सर्विंग्स मिल जाती है, तो आप हमसे कितनी भी फूड सर्विंग्स ले सकते हैं
1: जी,
0: और उसके साथ साथ अनलिमिटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स भी आपको उस पैकेज में ही मिल जाएंगे।
1: क्या बात है।
0: हाँ जी हाँ जी, और उसके साथ हमारे डीजे सिस्टम हो गया, हमारे जो लाइट्स हो गए, लाइट सिस्टम हो गया
1: जी जी,
0: हम लाइट्स डिम कर देते हैं आपके लिए, हमारा लाइट कंट्रोल सिस्टम हो गया, हम आपको म्यूजिक का एक्सेस तक दे देते हैं कि आप अपने खुद के गाने प्ले कर सकते हैं और खुद का एंजॉय कर सकते हैं, और उसके अलावा ऑन टॉप ऑफ दैट हम आपको आपका पूरा इवेंट प्लान करके देते हैं। इट्स नॉट कि आप हमको पे कर रहे हैं और हम आपको बोलें कि आइए हमारे पास ये खाना है लग गया, नो हम आपको पूरा इवेंट प्लान करके देते हैं, हम आपको आपका पूरा मेन्यू आपके साथ बैठ के डिसाइड करते हैं और हम आपको बोलते हैं कि हमारे पास आके जाइए देखिए हमारा सारा एम्बियंस देखिए, बैठ के हम आपका मेन्यू डिसाइड करते हैं और खासकर हम आपको फूड की टेस्टिंग करवाते हैं पहले ताकि आप श्योर हो जाए, आपको कोई डाउट ना रहे, और सर्विस की तो आप बात ही ना करें क्योंकि मैं खुद वहां पे होती हूँ, तो सर्विस तो हमारी अच्छी ही होती है, हमारी वन ऑफ द बेस्ट सर्विस हमारी मानी जाती है आज के टाइम पे मार्केट में, तो गेस्ट सर्विस से लेके आपको फूड तक कोई भी शिकायत आपको नहीं मिलेगी, और एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, $1,000 फॉर 30 पीपल इन वीकडेज, पंजाबी में मैं अनुवाद कर दूं
1: जी,
0: सो 30 बंदियां लिए $1,000 दे विच अनलिमिटेड फूड सर्विंग ते अनलिमिटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स थानू मिल जाएंगे, तुसी पहुंचना कित्थे है, नजारा ते, जल्दी जल्दी आ जाओ क्योंकि साडियां बुकिंग ने जिहड़ियां साडे स्लॉट्स ने जिहड़े ऑलरेडी बुक हो रहे ने, ते तुसी कॉल किहड़े नंबर ते करनी है सानू इनक्वायरी करन लई 905-451-2600 905-451-2600 ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਚੰਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਔਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨਿਊ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਵੈਂਟ ਅਸੀਂ $1,000 ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਜਣਿਆਂ ਦਾ प्लान आउट करके दवांगे
1: जी। नहीं बहुत ही बढ़िया है जी, आई थिंक ये इस तरह की डील आपको कहीं नहीं मिल सकती इतने सारे मतलब फैसिलिटीज के साथ में, और वीकडे स्पेशल डील है वो आप जरूर ग्रैब कीजिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि जो आपने एक चीज कमेंट करना चाहूंगा कि जिसने इतने शॉर्ट टाइम में आपने जो कमेंट्स किया है, जो मतलब आपने कस्टमर सर्विस में आप कहते हो आपकी अच्छी कस्टमर सर्विस है, वो मैंने भी देखी है लाइव ऑन लोकेशंस में जो भी मैं आता हूँ देखी है, तो वो आप जो भी लिस्टनर्स है आपको ये सारी चीजें का लाभ उठाना है तो पहुंचिए जी नजारा लोकेटेड है जी 30 रैम्बलर ड्राइव पे, नंबर टू कॉल इज 905-451-2600 905-451-2600 पे आप कॉल कीजिए, पार्टी बुक कीजिए, सबसे पहले जाके माहौल देखिए, एम्बियंस देखिए और फूड टेस्ट करके जरूर आइए, और आज के लिस्ट जो भी लकी विनर है उसको नजारा की तरफ से मिलेगा जी अल्फ्रेडो पास्ता जो उनका सबसे पसंदीदा पास्ता है ये आपको मिलेगा। पन्नी जी बहुत ही अच्छा लगा इतनी सारी इंफॉर्मेशन लाभ उसकी सुन के, और अपने साथ अभी बहुत ही खास गेस्ट जुड़ने वाले हैं जी, तो मैं उनको ऑनर करता हूँ। हेलो
16: हेलो
1: अमन सर सत श्रीकाल जी, गुड मॉर्निंग और वेरी वेलकम टू द शो।
16: हाँ जी थैंक यू सो मच पंडित, सत श्रीकाल तुहानू ते सारे लिसनर्स नूं सत श्रीकाल, और मैं ना अज ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ 10-12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਏ ਹੋਏ
1: ਜੀ ਜੀ,
16: ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਮਿਕਸਚਰ ਸੀਗਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ
1: ਜੀ ਜੀ,
16: ਈਵਨ ਮੈਂ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਨ ਏਅਰ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ।
1: ਮੈਂ
16: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਨਪਾਲ ਆ, ਤੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਚ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 15 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ AM 530 ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਬੋਰਡ ਲਾਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਲਾਏ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੱਪੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ AM 530 ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਔਰ ਬਲੈਸਡ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅਮਨਦੀਪ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਪੰਕਜ, ਪੰਕਜ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਿਕਸਚਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰੁੜ ਜਾਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਬੈਠ ਕੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਪਾਸ ਹੋਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੈਲਥ
1: ਜੀ,
16: ਹੈਲਥ 'ਚ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਜਸਟ ਮੈਂ ਡੇ ਆਫ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਪੰਕਜ
1: ਜੀ,
16: ਡੇ ਆਫ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ
1: ਜੀ।
16: ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਵਾਂਗੂ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀਮਤੀ ਹੈ,
1: ਤਾਂ
16: ਲਾਈਫ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਉੱਪਰ ਜਾਊਗੀ। ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਨਸਾਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਤੋਖ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਹਿਣਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੰਤੋਖ ਆ
1: ਜੀ, ਜੀ
16: ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੋਖ 'ਚ ਆ, ਸੰਤੋਖ 'ਚ ਆ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਭਲੀਕਾਰ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈਨਾ, ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ
1: ਜੀ,
16: ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਆਪਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੱਤੀ ਤੱਤੀ ਰੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ, ਵੀ ਤਾਂ ਭਾਣਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਪੰਕਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ
1: ਜੀ ਜੀ,
16: ਕਿ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ
1: ਜੀ,
16: ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ
1: ਜੀ ਜੀ,
16: ਬੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ
1: ਜੀ ਜੀ, ਬੋਲਦੇ ਜੀ।
16: ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ
1: ਜੀ ਜੀ,
16: ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਦਾ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਰਾਜੂ ਨਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
1: ਜੀ।
16: ਤੇ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਥੋੜੀ ਕੁਛ ਭੋਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲੀਏ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੀਸਗੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ
1: ਜੀ,
16: ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਵਾਂਗੂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਮਨਿਆਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖਿਓ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੀਨ ਕਬੂਲਣਗੇ ਨੀ, ਹੈਨਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਈਨ ਨੀ ਮੰਨਦੇ, ਧਰਮ ਬਦਲਦੇ ਨੀ, ਆਪਣਾ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਨੀ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਫੀਸ ਦਿੱਤਾ
1: ਜੀ,
16: ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤ ਲਈ ਫੀਸ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੱਜ਼ਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਜੋਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਜੋਤ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਰੂਪ ਸਮਾਨ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੋਤ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰੋ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਆਸ ਪਾਸ ਸਾਡੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਕ
1: नहीं जी, वो तो आपके मतलब अच्छा ही है, आप मतलब
16: अच्छा। मैं कुछ नंबर देने चाहूंगा, एक तो अनिल चोपड़ा जी,
1: जी जी
16: सब तो वध मैनू फोन कॉल उन्होंने आई जी, सब तो वध
1: जी जी।
16: किसी ने कोई गड्डी चकनी है, ये बड़ा एक जिंदा दिल इंसान है अनिल चोपड़ा
1: जी।
16: चोपड़ा जी नू मैं जब कैनेडा च नवा आया सी, अखबारां दे फ्रंट पेज उत्ते देखदा हुंदा सी, मैं कहिंदा सी क्या बात है, साडे पंजाबी साडे इंडियन लोग फ्रंट पेज उत्ते टोरंटो स्टार दे ग्लोबल मेल दे टोरंटो सन दे फ्रंट पेज उत्ते कवर पेज उत्ते फोटो किन्नी चढ़ाई है, ते तुसी चोपड़ा जी नू मिलना। सब तो वध गड्डियां सेल कीती, इन्ने हजार गड्डी सेल कर दित्ती
1: जी
16: कि फोर दे टॉप सेल्स पर्सन दे तौर उत्ते हो अवार्डेड भी ने। ਤੁਸੀਂ ਅਨਿਲ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ ਮਿਲਟਨ ਫੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਫੋਰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਫੋਰਡ ਕੈਸਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਜੇ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਉਹ ਫੋਰਡ ਆ
1: ਜੀ।
16: ਹਾਂਜੀ, ਕ੍ਰਾਈਸਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਨੇ
1: ਜੀ ਜੀ ਜੀ,
16: ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ
1: ਜੀ।
16: ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਪੌਂਸਰਸ ਨੇ, ਪੰਕਜ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ
1: ਜੀ ਜੀ ਜੀ।
16: ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਿਵਾਨੂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ ਵਿੰਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਿਵਾਨੂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਵਾਨੂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ
1: ਜੀ ਜੀ।
16: ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਾਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਆ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਪ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਿਵਾਨੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਚ ਹਾਜ਼ਰ, ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦਿਓ ਜਿਹਨਾਂ ਸਕੀ ਹੈ
1: ਜੀ ਜੀ। ਉਨਕਾ ਜੀ
16: 3 to 0 6 3 to 0 0 ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਟੈਂਕ ਫੁੱਲ ਕਰਨ ਤੇ
1: ਜੀ ਜੀ,
16: ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ $100 ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਚਾ ਜਮੋ, ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਆ ਹੁਣ
1: ਜੀ।
16: ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੀ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ, ਪਵਨ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਵਨ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
1: ਜੀ, 6473259100 6473259100 ਡਾਇਮੰਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਵਨ ਕੌਰ ਗਿੱਲ। आपके लिए आई थिंक वो कॉल कर रहे हैं, मैं उनको ऑन एयर ले सकता हूँ?
16: नहीं नहीं, अपने को टाइम नहीं है,
1: ठीक है जी।
16: ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰ ਲਿਓ 416-518-3200। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ
1: ਜੀ,
16: ਜੋ ਕਮਾ ਕੇ ਘਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹੀ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਕਦੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਨਾ ਪੀਤਾ, ਕਦੇ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਲਏ, ਤੇ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਦੇ ਨੀ ਮਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਬੈਂਕ ਨੀ ਮਰਨਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਮਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਮਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਾਨੂੰ ਬੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਓ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੀਲ ਕਰੋ, ਭੱਜੋ ਨਾ ਉਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਿਹਾਈਂਡ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਮਕਾਈ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਮਕਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, 36 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਾ ਉਨਾ ਹੀ ਖੜਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਰਾਊਂਡ 70% ਪੇ ਬੈਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਮਿਨੀਮਮ ਪੇਮੈਂਟ ਚ
1: ਜੀ,
16: ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। 416-518-3200 ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, 416-518-3200। ਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਰਕਾਨੀ ਨੇ 4 ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਡਿਟੇਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ
1: ਜੀ।
16: ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇਹ ਸਾਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਾਊਥ ਅਮੈਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗੀ, ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਰਪ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਉਂਡੀਆ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਏ, 3 ਕੰਟਰੀਆਂ ਮੇਨ ਬਣ ਜਾਈਏ
1: ਜੀ।
16: ਪਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਡਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਟੈਵੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਵੋਸ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਸੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹੀ ਟਰੰਪ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਡੀਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਵਰਕਆਊਟ ਹੋ ਜੂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਦਾ ਪੇਚੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਬਲ ਨਾਲ ਕੀ ਜੁੜਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਮੈਂ ਦਿਓ ਜਾਂ 416-518-3200 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, 416-518-3200 ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ,
1: ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। आई थिंक जब भी अमन सर बात करते तो काफी सारा कंटेंट आता है. चलो कल के शो में देखते हैं जी क्या कंटेंट ले आएंगे. चलो जी हम छोटा सा मैसेज दीजिए, हम दे देते हैं जी अपने जो भी एडवर्टाइजर्स हैं उनका. जी पंजाब टैक्स सॉल्यूशन जी, अगर आपको टैक्स का फाइलिंग करवानी है जी तो जगजीत सर जी के पास पहुंचे जी फ्रॉम पंजाब टैक्स सॉल्यूशंस. इनके कैम्ब्रिज, ब्रैंडफोर्ड और मिसिसागा गोल्फ लंदन, यहां पे इनकी लोकेशन है जी. कॉन्टैक्ट नंबर है जी 416-720-3642, 416-720-3642 पे आप कॉल कर सकते हो. इंडिया जाना है तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जी. कोमल जी को कॉल करनी है, ऑल लिंक ट्रेवल्स है, उनको कॉल करनी है 9052397711. उनके पास बहुत ही अट्रैक्टिव डील्स है अभी दिवाली के लिए, अक्टूबर नवंबर के लिए स्पेशल पैकेजेस है, तो जरूर कॉल कीजिए जी आप कोमल फ्रॉम ऑल लिंक ट्रेवल से. और आपको डक क्लीनिंग करवानी है तो नानक डक क्लीनिंग जैसा कोई भी आपको अच्छा डक क्लीन करके नहीं देगा. इनके पास बहुत ही बढ़िया रेट है. कॉल करना है जी 416-729-1529 पे आप इन्हें कॉल कर सकते हो. और ऑल स्टेट इंश्योरेंस से दीक्षा गुलेरिया, कोई भी इंश्योरेंस करवानी है होम और ऑटो इंश्योरेंस तो आप दीक्षा गुलेरिया जी से कॉन्टेक्ट कर सकते हो 647-659-2810 पे आप कॉल कीजिए जी दीक्षा गुलेरिया जी से. उसके साथ साथ में जी रियलिटी ग्रुप के रियलिटी ग्रुप से आप अगर कोई भी रिनोवेशंस का काम करवाना है जी सुखमन जी को कॉल करनी है. इन्होंने बहुत ही बढ़िया बड़ी बड़ी इमारतें पेंट की है, गवर्नमेंट बिल्डिंग से लेके टेंडर्स में पार्टिसिपेट करके काफी सारे काम्स किए हैं. तो इनको आप सुखमन जी को कॉल कीजिए रियलिटी ग्रुप से 416-816-8401 रियलिटी ग्रुप को आप कॉल कीजिए जी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. उसके साथ साथ में महंगाई के दुश्मन फ्रेश ग्रोसरी डेपो, आप कोई भी इनके पास काफी सारी डील चलती हुई है. ब्लैक फ्राइडे वीकेंड के डील का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है. आप कभी भी जाइए, रात को 12 बजे तक खुला होता है जी फ्रेश ग्रोसरी डेपो 905-451-458-1300. ये लोकेटेड है जी 31 स्टेपल बुश एवेन्यू स्टॉर्बम एंड सैंडलवुड का इंटरसेक्शन. इसके अलावा ये डरम रीजन में भी है जी विटबी में 1618 डंडा स्ट्रीट ईस्ट विटबी में भी प्रेजेंट है ये. तो जो ब्रैम्पटन में डील्स मिलेगी वही आपको विटबी में भी डील मिलेगी जी फ्रेश ग्रोसरी डेपो. जो ब्रैम्पटन का नंबर है 905-458-1300, विटबी वाला नंबर है जी 905-556-1651 905-556-1651 को आप कॉल करके वहां पे आप पहुंच सकते हो जी फ्रेश ग्रोसरी डिपो. तवा किचन का भी हम मैसेज दे देते हैं जी, आपको कोई भी प्रकार की केटरिंग करवानी है, ब्रेकफास्ट करवाना है, आपको कुछ भी वहां पे टेकआउट लेना है जी, वहां पे उनकी 2 for $12.99 डील चल रही है जी, तो जरूर पहुंचिए जी तवा किचन पे. नंबर है जी 9057901699 पे आप उनको कॉल कर सकते हो जी. इसके साथ साथ में जी बोल्टन स्प्रिंग स्पेशलिस्ट 9058518222 पे आप कॉल कर सकते हो जी. बोल्टन स्प्रिंग द स्प्रिंग स्पेशलिस्ट 25 साल का इनको तजुर्बा है जी इन दिस बिजनेस. तो ये लोकेटेड है जी 570 परसी रोड बोल्टन पे. तो जी बोल्टन स्प्रिंग पे जरूर पहुंचिए और जो भी डील्स है उनके पास, जो भी वर्कमैनशिप है उसका आप लाभ उठाइए. प्लस कोई भी अगर आप वेयरहाउस मैनेजर हमें सुन रहा है, ऑपरेशंस मैनेजर सुन रहा है जी, शिपिंग डिपार्टमेंट हमें सुन रहा है, परचेसिंग टीम सुन रही है, तो आपको पैलेट्स की जरूरत है तो एमके पैलेट्स से बढ़िया आपको कोई भी पैलेट्स कस्टमाइज करके नहीं दे सकता. वो ISPM 15 सर्टिफाइड है, वो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, कस्टम स्किड्स करते हैं, कस्टम पैलेट्स करते हैं, कस्टम शिपिंग एंड इंडस्ट्रियल पैकिंग बिल्ड स्पेशली फॉर प्रोडक्ट्स फॉर इंटरनेशनल शिपिंग, तो इसके लिए भी करते. तो एम के पैलेट्स, इनको कॉल करनी है जी 365-866-2080 पे आप उन्हें कॉल कर सकते हो जी. और आज का दिन बहुत ही बढ़िया है जी. थैंक यू सो मच सारे लिसनर्स को जो भी रेडियो आवाज 5:30 AM आज सुन रहे थे, उसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. और राजविंदर जी फ्रॉम कैम्ब्रिज, इन्होंने आज का विनर है वो आज नज़ारा पे जाके उनका स्पेशल अल्फ्रेडो पास्ता फ्री ले सकते हैं जी। आज उनको कॉल करके आप अपना पास्ता बुक कीजिए और प्लीज़ कलेक्ट कीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और आपका साथ हम कल भी जो रहेगा हमारे साथ 9 बजे से लेके 10 बजे तक, और सैटरडे को 10 से लेके 1 PM तक आप हमें सुन सकते हैं, जो 1 PM तक आप हमें सुन सकते हैं जो। तो जुड़े रहिए जी रेडियो आवाज़ तक। थैंक यू सो मच।

0: ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੋਡ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 1 905-799-8877 ਸੋਫਾ ਸਟੂਡੀਓ .ca ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ
1: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਆਇਲ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੀਕੇਜ ਡੈਮੇਜ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਲ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਐਂਡ ਵਾਸ਼ 24/7 ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ 365 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਆਲ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਐਂਡ ਵਾਸ਼ 905-452-9955 905-452-9955
2: ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਦੀ ਕੇਅਰ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਫੁੱਲ ਰਿਪੇਅਰ
3: ਇਹ ਹੋਈ ਹਨ ਸਕਾਈਡੋਮ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਅਨੂ ਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਕਾਰ ਵੀ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਬਣਾਤੀ ਸੀ।
2: ਜੀ ਹਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਅਤੇ ਬਾਡੀ ਵਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਟ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਥੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 905-874-9978।
1: ਲਓ ਜੀ, ਜੁੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਤਾਸ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੱਜਦਾ। 10:47 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਜੀ ਸਰਾਂਸ਼ ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਇੰਕ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਾਂਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਇਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਾਂਸ਼ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
4: $50,000-$1,70,000 तक ये फंडिंग होती है। आपके खाते में सीधा गवर्नमेंट से आती है। इस पैसे को आप कहीं भी कैसे भी यूज कर सकते हैं। 0% पे लोन है, बिना गारंटी के है। और ऐसा लोन कहाँ मिलेगा जिसकी पहली किस्ती 2.5 साल बाद स्टार्ट और 15 साल में पे करनी है। शुरू में ब्याज 0%, 2.5 साल बाद ब्याज कितना है 2.5% पूरे साल का।
1: ठीक है, ते इदे विच जिवें हुण फैमिली ऑफ 4 एंड 5 है ना, ते उना दा किन्ना क बन जांदा अमाउंट?
4: हाँ जी, सो गवर्नमेंट का जो ये फंडिंग है डिपेंड करता है कुछ पैरामीटर्स पे। आपकी इनकम अगर कम है नोटिस ऑफ असेसमेंट पे तो ज्यादा फायदा है, बच्चे छोटे हैं तो और ज्यादा फायदा है, और बच्चे जितने ज्यादा हैं उतना और भी ज्यादा फायदा है। तो इसलिए अगर फैमिली ऑफ 4 है तो $1.5 लाख, फैमिली ऑफ 5 है तो $1,17,000 0% पे आपके खाते में गवर्नमेंट दे रही है। मिस ना करें, अभी आपको पता है ट्रेड वॉर चल रही है, कल को गवर्नमेंट और कोई कट्स ना कर दे इसके अंदर। बहुत लोग ले चुके हैं, प्रॉपर ऑफिस हमारा, इसमें कोई भी नकली कागज नहीं लगता, साफ काम है, 8 साल से कर रहे हैं, कोई भी चलाकी नहीं है इसके अंदर।
1: ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये तो सारांश की गल बिल्कुल सही है, क्योंकि जिवें हुण पहला जिहड़ा हैगा यह फंड जिहड़ा सीगा लोन जिहड़ा सी इहदा अमाउंट घट सीगा, हुण इहनां ने वधा दित्ता हैगा, है ना, ते पहला जिन्ना सीगा उह तों डबल अमाउंट तुहानूं हुण जिहड़ा मिलदा हैगा। ते कदे की गवर्नमेंट कोई स्टैप चकदी है, है ना, हो सकता है अगे जाके वध भी जावे, हो सकता है घट भी जावे, हो सकता है बंद भी हो जाए, है ना, वी नेवर नो कि किवें जिहड़ियां सरकारां उह काम करदियां। सो तुसीं समां रहिंदे होए हुण तुसीं कॉल कर सकदे हो सरांश नूं ते कोई भी जानकारी लैणी है उहदे बारे इहनां नूं तुसीं पुछ सकदे हो। क्लीन एंड क्लीयर अपने आप दे जिहड़े तुहाडे डाउट्स हैगे आ उह कर सकदे हो। ते मैं नंबर एक बार दे दिंदी हां, ਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਰਾਂਸ਼ ਦਾ 437-264-3475 437-264-3175 ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਾਂਸ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਪ ਫਰੰਟ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?
4: ਹਮਨੇ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਸਭ ਕੁਝ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਰੱਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇ ਹਮ ਲੋਗ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮੀ ਡਰਤੇ ਹੈ, ਬਟ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕੁਛ ਹਮਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਹਮਨੇ ਕੁਛ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਾਮ ਮੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ना हमने कोई कसर छोड़ी आपको दिखाने के लिए। कैसे? हमने फीस लेनी है आपकी $199, शुरू में भी नहीं लेनी, काम होने के बाद लेनी है। मुझे अभी सुबह से 3 ट्रक आ चुके हैं, मतलब 3 मंथों की फंडिंग उनके खाते में गिर चुकी है अभी तक, तो इसलिए आप पीछे ना रहिए। 1-3 महीने में आपके खाते में ठा करके फंडिंग आती है, मिस ना करें। फीस भी हमारी ट्रांसपेरेंट है, कोई भी मीठी बातें नहीं है, प्रॉपर ऑफिस है, 6 बंदे आपके लिए काम कर रहे हैं, 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड हर एंटायर डेयरी पे कॉल करें, ऑफिस है, एस्टिमेट कराएं, कल बैच स्टार्ट है, अगर आपने ये बैच मिस करा तो आपको एक से डेढ़ महीना वेट करना पड़ेगा, तब तक तो आपके खाते में फंडिंग गिर ही जाएगी। पीछे ना रहिए, नंबर नोट करें 4372641375, 4372641375, कॉल करो एस्टिमेट लो 4372643175, 4372641375।
1: जी थैंक यू सरांश।
4: थैंक यू जी।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जी, तुसी सरांश नाल गलबात कर सकते हो, ते सरांश नूं जेड़े भी क्वेश्चन तुसी पुछने हो पुछ सकते हो, क्योंकि कई बार ना आपां नूं बड़ा किसी चीज बारे इन्ना पता नहीं हुंदा, या आपां डरदे बड़ा रहिंदे आ, एवं बड़ा हुंदा है, कोई कोई पॉइंट ऐदा है आप कहते लै तो पंगे ही ला लेना छड्डो परे, है ना। पर नहीं, तुसी जदों जो भी डाउट हुंदा ना, वैसे वो क्लीयर होना चाहिए अपना, तो तुसी जरूर अपॉइंटमेंट बनाओ, ऑफिस जाओ, जिहड़े पत्र पेपर है थानू डॉक्यूमेंट्स कहिंदे है वो नाल लैके चले जाओ, जे थानू सब कुछ क्लीयर हो जाता नाल दी नाल तुसी अप्लाई कर सकते हो, है ना, क्योंकि वो तो इन्होंने सारा काम करना, तुसी तो सिर्फ एक अपने डाउट क्लीयर करने है, एक जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैगे आ वो तुसी इन्हां नू देने हैगे आ। नंबर हैगा जी 4372641375, 4372643175 ते जिहड़ी गलबात है वह तुसी कर सकते हो सरांश दे नाल। ते एक बार मैं फिर थानू दस देवां जिहड़े मैट्रसिज हैगे आ ना, क्योंकि हुण मैनू इनक्वायरी आई है भी मैट्रसिज जिहड़े आ उह आपां नूं लैणे आ, ते असीं कित्थे, नंबर एक बार फिर दे दो। बिल्कुल, मैट्रसिज ना बड़े ही कमाल दे आ, एक तां इहनां दा रेट बड़ा वधिया, अदरवाइज तां जिवें कहिंदे वी इन्ने दे महंगे महंगे, और उह चलदे वी नहीं हैगे, क्योंकि इहनां दी अपनी फैक्टरी है, वधिया मैट्रसिज इह तैयार करदे आ। ईवन के जिहड़े कॉलेज यूनिवर्सिटीज वाले जिथे होस्टल हुंदे आ ना, उन्होंने ये प्रोवाइड करते हैं मैट्रसिज। सो तुसी नंबर नोट कर लो जी 647-388-9041 ते गलबात हो सकती, 6473889041 ते। जिहड़ी बेसमेंट हैगी आ उहदी जानकारी लैणी तुसी, ब्रैम्पटन दे विच ही आ जी बेसमेंट, किराए दे लई खाली है, 1 अक्तूबर तो तुसी मूव इन हो सकते हो उत्थे। नंबर नोट कर लो 647-833-2771 ते गलबात हो सकती है, 6478332771 ते गलबात तुसी कर सकते हो। ते सगनदीप दा नंबर मैं एक बार दवां थानू, सगनदीप कहिंदे है कि बड़े वधिया सोफे जे तुसी बनाउणे आ तां तुसी 905-799-8877 ते जिहड़ी गलबात कर सकते हो, 9057998877 ते गलबात तुहाडी हो सकदी है सगनदीप दे नाल।

0: दोस्तों सासिका नमस्कार मगा
1: टोरंटो गेट रेडी पंजाबी विरसा रेडियो एंड टेलीविजन रियल्टर रव सिंह सेलुलर पॉइंट्स ए टू जी किचन कैबिनेट एंड रियल्टर हार्प गरेवाल प्रेजेंट्स द

0: Friday, September 18, 7 PM at the Living Arts Center, Mississauga.
1: पहला आया सी बड़ी मोहब्बत दी थी, उम्मीद कर रहा इस बार भी तुसी आशीर्वाद दोगे.
2: वे आ जा तो मैं नाल नचिए, नचिए बाहच बाहपा. वे आ जा तो मैं नाल नचिए.
0: For tickets, visit Ticketmaster. For information, call Singh Harjeet at 6474481000.

0: Brampton या फिर तीजी लोकेशन 9985 Macvin Drive Unit 9 Brampton Indian Fruitland ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 Mayfield Road Brampton वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े Indian Fruitland 905-456-9900
1: A to Z किचन कैबिनेट भाई वाह क्या किचन कैबिनेट तैयार करते हैं लकी भाजी दी बनिया किचन कैबिनेट देखे गुआंढी भी बहाने नाल तुहाडे घरे आउंदे हन शीशे नाल भरिया किचन कैबिनेट वास्ते डिजाइनर किचन कैबिनेट वास्ते A to Z किचन कैबिनेट 416-720-7073 905-720-7073 ते कॉल कर सकदे हो
2: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000. Toronto's number one station, AM 530. Punjabi Versa!

कैसे देखो गीत बंजारन कुड़ी दे भी गीत गाता है, लाली नैना च रड़कदी छड के सुपने गुलाबी रंग दे हैं, राती इश्क दी होई बरसात, सारी रात भिजदे रहे सानू नींद ना आई सारी रात, ओ सारी रात भिजदे रहे। इक्को वेले हुंदी बरसात वसल दियां घड़ियां नू, ना रोकिया गया नैन लगियां सौण दियां झड़ियां नू। हैं ते फिर कहंदे आ वी हक बाहू दम दम बाहू, क्या बात है। साड़ी पाकिस्तानी कम्यूनिटी वास्ते बड़े इस तरह के जिहड़े गीत गाए आ हंस भाजी ने, और पाकिस्तानी कम्यूनिटी बहुत आ रही है। सब तो वड्डी गल इह आ, मैं स्पैशली तौर पर बहुत थैंक यू कर रहा बाबू पान वालियां दा स्पैशली तौर पर, और वह अपने पूरियां फैमिलीज दे नाल कराची वाले ग्रुप बड़े आ रहे हैं। कराची के इतने ग्रुप बने हुए हैं, कई बार ना असं इतने वट्सएप के ग्रुप बने होंगे, कई फैमिलीज बनाए होंगे, कई ने अपनी कम्यूनिटी के ग्रुप्स बनाए होंगे, वो बड़े परिवार आ रहे हैं। मैं उस चीज़ की बड़ी खुशी है। मैं जो ना परसनली तौर पर साड़ी पाकिस्तानी कम्यूनिटीज़ दी कॉल आती हैं, हरजीत जी कहते हंस तुहाडा नहीं कला तो हंस साडा भी है। मैं क्या जी, मैं तो कभी भी नहीं कहा भी हंस कला पंजाबियों का ही है, हंस तो सारी

0: September 18th, 7 PM at the Living Arts Center, Mississauga.
1: पहला आया सी बड़ी मोहब्बत दी थी, उम्मीद कर रहा हूँ इस बार भी तुझे आशीर्वाद दोगे।
2: वे आ जा तो मैं लाल नचिए, नचिए पाँच बाहपा, वे आ जा तो मैं लाल नचिए।
0: For tickets, visit Ticketmaster. For information, call Singh Harjeet at 647-448-1000.
3: Hi, this is Harpreet Singh from Top Choice Insurance Agency. Product.

0: ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 416-817-6500. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੈਣੀ, ਚਾਰਟਰਡ ਲਾਈਫ ਅੰਡਰਰਾਈਟਰ ਐਂਡ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਫਰੋਮ ਟੌਪ ਚੋਇਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ.
1: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे. आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज.
2: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129. 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा. कॉल 9054608888. दैट्स 9054608888.
1: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ.

0: भी दोस्त या रिश्तेदार को एज ए स्टूडेंट, विजिटर, पीआर या फिर अपने स्पाउस या पेरेंट्स को कनाडा बुलाना चाहते हो तो याद रखें स्टार इमिग्रेशन।
1: स्टार इमिग्रेशन
0: कॉल 905-457-3131।
1: स्टार इमिग्रेशन।
2: लो जी प्रोग्राम पंजाबी विरसा नाल नाल मैनू मैसेज आ रहा, नाल नाल मैं टाइप कर रहा मैसेज, नाल नाल गल्लां बातां कर रहा, टिकटां दी जानकारी पुछ रहे सारे जने हुण। और मैं समझदा कि तुसी टिकटां जल्दी जल्दी लै लो क्योंकि हुण टाइम ना ज़्यादा खराब करो। फ्राइडे आ गया नेड़े ही, अज मंगल आपका दिन मंगल में हो और मंगलवार अज बीत गया समझो, क्योंकि जदों दिन शुरू हो गया तो फिर बीत भी जल्दी जाता है। साल साल पहला विआह की तैयारी कर देने, साल कदों आ जाता पता नहीं लगता। और नंबर तुहाडे वास्ते हाजिर है मेरा, तुसी मैनू कॉल कर लो 6474481000 ते कॉल की जा सकती है, तुहाडे वास्ते नंबर हाजिर है। और अगला गाना मैं किहड़ा लाउन लगा सी, अगला गाना लाउन लगा सी मैं राती इश्क दी हुई बरसात सारी रात भिजदे रहे ते सानू नींद ना आई सारी रात भिजदे रहे। चलो हरजीत जी वह भी ला दो, वह भी ला दो, तेरा मेरा प्यार कितने कागजी तो नहीं, साढ़े नाल सोहणियो नाराज भी तो नहीं। आह हा हा कैसे, एक गाना मैं होर लाना, मैनू ना पहला वह गाना वो ला लो हंस भाई का, जिहड़ा कि गाना बड़ा मकबूल होया छोटियां साहिबजादियां दे उत्ते गीत हंस भाई ने गाया सी, निक्के निक्के दो खालसे ओ जोधे ओ गुरु रूप गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे सोहने सोहने पुत्तर। जे किसी ने हिस्टरी पढ़ी होवे ना ते उहदे च लिखिया होया कई चीज़ां ने, कई बहुत जानकार जिन्हां नूं नॉलेज सी किताबां दे, कहिंदे गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जिहड़े पुत्तर सी बड़े सोहने हुंदे सी, जिहड़ा भी एक वारी देख लैंदा सी ना उहनां नूं उह आकर्षित हो जांदा सी, इन्ने सोहने लाल सी गुरु साहिबां दे। ते कैसी वह गुरु साहबां की हिम्मत होएगी, गुरु साहबां का दिल होएगा, वह दादी का कैसा दिल होएगा जो तैयार करके फिर मुगलों के कोल भेज दे। कैसे वह प्यो का दिल होएगा जिस वेले अपने वड्डे साहब जी नूं कहिंदे वी जंग की तैयारी करो, कैसा वह बाप होएगा जिहड़े आप ठंड दे विच दिनां दे विच हैं कित्थे विछाइयां कीतियां मखमलियां दे सौन वाले गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी। कैसे वह गीत बन गए, कैसिया वह गल्लां बन गईयां जिहड़ी कि अज असी सुन के उस चीज़ च फकर महसूस करते हैं। आओ सुनिए अज गीत, बहुत वधिया गीत है।
3: बच्चे निहां

ऐसा गवैया अपने शहर दे विच आ रहा है, ऐसा वो म्यूजिक दा हीरा अपने शहर दे जा रहा है कि टिकटा ticketmaster.ca टिकटा ticketmaster.ca तो ले लियो, ते जिन्होंने छोटे साहिबजादों के लिए इन्ने खूबसूरत गीत गाया है।

0: Listen live Vatnodo Radio with Sukhi Nijjar.
1: The wait is finally over. Gordy Kuman of REMAX Gold Realty proudly presents another golden opportunity to own premium retail and office space in South Caledon. Introducing Caledon Commercial Center, a new 15-acre commercial development located at the prime intersection of Highway 10 and Highway 410. Retail and office units are now available for sale. Secure your space in Caledon's next commercial destination. Contact our team at REMAX Gold Realty to book your unit today.
2: रॉकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार
3: ओए कल्ला मैं नहीं अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने
2: वाह यार नंबर ता दई मोना जी दा
3: हां जी तुसी भी नोट करो इंश्योरेंस कोई भी होवे
4: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी
3: जेडे लाइफ इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है हुणे कॉल करो 416-500-1509 ते
4: याद रखो मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
3: 416-509-1509
4: और विजिट insuranceforyou.ca
5: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है आज ही मुझे कॉल करें आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है 416-570-0157 416-570-0157

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: आज खुश तो बात हो गया था।
2: ओ ता होना ही है जदों ढिलो वीडियो दा नो फ्रीजिंग नो बफरिंग आला 4K अल्ट्रा हाई क्वालिटी IPTV बॉक्स होवे तैं लगदा बणदा ही है।
1: आज मेरे पास बिल है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है।
2: बॉलीवुड मूवीज ने टीवी शोज वेब सीरीज हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल्स एंजॉय करने वर्ल्ड्स बेस्ट ते हाईएस्ट क्वालिटी वाला IPTV बॉक्स है। ते नाले टिल्लो वीडियो को गुरबानी रेडियो भी है ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री। और दस क्या चाहिए था?
3: क्यों क्या रहे
2: हो पर? ओ पाजी सेलिब्रेशन 40 years इन एंटरटेनमेंट बिजनेस।
4: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
2: पर टिल्लो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ। एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जां tillovideo.com। होर कोई सेवा?
5: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
6: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888। दैट्स 905-460-8888।
5: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
7: जे मैनू यार ना मिले ते मर जावां, जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावां।
8: What's up everybody, this is Jasmine Sandler ते तुसी सुन रहे हो वतनों दूर with सुखी निजर।

0: देखो जी करता है अपना नंबर वन पर मेरा दिल करता है अपना घर सारे तो सोना हो भी
1: बस इनी गल
2: हो कार

0: ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਰੈਡੀ ਪ੍ਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।
1: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਇੰਕ ਤੋਂ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੋਂਸਰਡ ਲੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਰਸਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਰਾਂਸ਼ ਜੀ ਸਵਾਗਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
2: ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
1: ਜੀ ਸਰਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟਡ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਨ ਦੀ ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ।
2: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, 8 ਸਾਲ ਸੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁਕੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਫਿਸ ਹੈ, 268 ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੁਲੇਟ ਪੇ। ਲੋਨ ਕੀ ਰੇਂਜ ਹੈ, 50,000 ਸੇ 1,70,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ। ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪ PR ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਆਸਾਨ ਸੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰੇ। और लाइक ऑन अदर हैंड आप लाइक फुली ऑनलाइन कोर्सेज है, ऑन अदर हैंड आप लोन को अपने अकाउंट में हासिल करें, 0% पे है ये लोन, और ऐसा लोन आपको कहीं से मिल ही नहीं सकता।
1: जी, ये फंडिंग मिलती है, इन्हों आप कितने यूज कर सकते हैं, मतलब जेड़ा खर्चा करना हो अपने आप ते कर सकते हैं या पढ़ाई ते ही खर्चा करना है?
2: हाँ जी, इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हमारे इतने सारे क्लाइंट्स हैं जो इसको मतलब इन्वेस्ट करते हैं या अपने डेली नीड्स के लिए यूज करते हैं, कोई भी इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पूरा पैसा आपके खाते में गवर्नमेंट देती है और कहीं भी आप इसे यूज करें।
1: जी सर, जो कोर्सेज करने हैं इन्हों का सब तो ज्यादा मैक्सिमम फायदा किनू होंगे?
2: हाँ जी, इसमें फैमिली साइज अगर आपका ज्यादा है, लाइक हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनकी एज 40-50 इयर्स है, उनके 2-3 बच्चे हैं, तो अगर हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ते हैं तो उनको फैमिली ऑफ 4 को 1.5 लाख, फैमिली ऑफ 5 को, हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ते हैं तो 170,000 डॉलर का लोन आता है, 0% पे, कहीं भी यूज करें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एंड लाइक देयर इज नो कैच इन इट, कोई भी इसमें चलाकी नहीं है।
1: जी, तो थोड़ा जे भी दसो कि जेडे ये कोर्सेज ने इन्हां दे टाइम ड्यूरेशन की है, ते जेडी पेमेंट्स आ ओ कदों शुरू हुंदी है, कदों कदों पेमेंट्स करनियां हुंदियां, इहदे बारे भी थोड़ा दसो प्लीज।
2: हाँ जी, पेमेंट तो कोई करनी नहीं है, गवर्नमेंट ही आपके यहाँ पे खड़ी हुई है आपके लिए। कैसे मतलब, 2 साल का कोर्स है तो आपको लाइक इसमें 4 किस्तों में पैसा आता है गवर्नमेंट से। ईयर 1 में अलग आते, ईयर 2 में अलग आते, डबल मनी आती है। राइट, बिजनेस का कोर्स है, ऑनलाइन है, कहीं नहीं जा रहे, आप घर ही बैठे हैं, फोन पे लैपटॉप पे क्लास लगा रहे हैं, और आपके पास 1,70,000-1.5 लाख तक लोन आ गया, कहीं भी आप इसे यूज करें। और इससे मतलब जितना ज्यादा फैमिली साइज है उतना आपको ज्यादा बेनिफिट है।
1: ओके, ठीक है।
2: ₹2.5 साल बाद रिटर्न करना स्टार्ट करना है, ब्याज दर शुरू में तो 0% है ही नहीं, मतलब ब्याज 2.5 साल बाद भी ब्याज 2.5% पूरे साल का है, गाड़ी का लोन उतार दो इससे आप।
1: ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਪਾਸ ਕੋਰਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਸਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ?
2: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਮ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਿਸ ਮੇ ਡੀਲ ਕਰਤੇ ਜੋ ਕਿ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਆਸਾਨ ਆਸਾਨ ਈਜ਼ੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਹੈ, ਔਰ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 3-4 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈ, ਸਭ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ। ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਊਬਰ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਇੰਪਲੋਇਡ ਲੋਕ ਘਰ ਕੇ ਕੰਫਰਟ ਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੋਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਔਰ ਅਪ ਲਾਈਕ ਟਫ ਟਾਈਮ ਉਨਕੋ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
1: ਜੀ, ਤੇ ਸਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਲੋਕੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਨ ਇਸ ਦੇ ਲਈ?
2: ਹਮਾਰੀ ਫੀਸ ट्रांसपेरेंट है, हम पूरी कम्युनिकेशन में, पूरे इंटरव्यू में फीस बताते हैं, ये नहीं कि मीठी बातें करके टिका देंगे, हमें फोन करें तो फीस बताएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। साफ कर रहे हैं फीस हमारी कितनी काम होने के बाद $190 फ्लैट फीस है।
1: जी,
2: दैट्स इट, कोई हिडन फीस, कोई परसेंटेज, कोई कमीशन नहीं है, साफ काम कर रहे हैं, 8 साल में हजारों को असिस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी।
1: तो तुम अपना एड्रेस भी दे दो, नंबर भी शेयर करो, सो दैट कितना लोग रीच आउट कर लें।
2: बिल्कुल जी, एड्रेस है जी 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड, हर एंटरी डेरी पे, आप आज भी आ सकते हैं, और हमारा नंबर नोट करें, अभी कॉल करें, असेसमेंट कराएं, 437-264-3175, 437-264-3175। ऐसा लोन आपको कहीं नहीं मिलेगा जिसकी किस्त 2.5 साल बाद स्टार्ट है और 0% और 2.5% ब्याज है पूरे साल का। 437-264-3175, 437-264-3175।
3: अपनी इंश्योरेंस जरूर करवाओ। कॉल करो उमरप्रीत चावला नू जिना तो मॉर्गेज इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस करवा सकते हो।

0: Friday, September 18, 7 PM at the Living Arts Center, Mississauga.
1: Pehla aaya si badi order dikhi, ummeed kar raha. Is baar bhi tujhe aashirwaad doge.
2: Ve aaja do me naal nachiye, nachiye baah baah pa. Ve aaja do me naal nachiye.
0: For tickets, visit Ticketmaster. For information, call Singh Harjeet at 647-448-1000.
3: कनेडा विच रहंदे होए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
4: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
5: जेकर तुसी भी किसे तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-452-3381 ते 416-457-3381 ते।
3: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे। हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381।
6: ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਤੇ 24/7 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ www.desparadesradio.com ਜਾਂ www.desparadestv.com। ਲਾਈਵ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ IPTV ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ 24/7।

0: स्पोर्ट्स वाम दिती जांदी ने अज ही आओ 170 गिलडन रोड जिन नंबर 17 170 गिलडन रोड जिन नंबर 17 टेलीफोन नंबर 6473021322 6473321322 जेलो टायर सेंटर
1: के ड्राइवरी सूट कर दिया जट्टा नु
0: सस्ती ग्रोसरी और हरियां ताजियां सब्जियां लई शहर दे विच इको एक नाम सत शिखामा तो इंडियन फ्रूट लैंड ते नाल ही है नदी तंदूरी ग्रिल बाहरले पासे जिथो तुहानू बणिया बणिया हर फूड मिलता है नाल दी नाल रॉ मीट भी और मैरिनेट कीता मीट भी तुसीं लिया सकदे हो अपने नेड़ली लोकेशन ते आओ 45 डस्ट ड्राइव 15 फेंडर वे ब्रैम्पटन 9985 मक्वीन ड्राइव ब्रैम्पटन 1465 मेफील्ड रोड ब्रैम्पटन 33 फार्ली ड्राइव गोवा और 600 हैस्पिटल रोड कैम्ब्रिज नमी खुली ब्रांच 25 सेंट्रल बुड पार्क वे कैनेडी सेंट्रल बुड पार्क वे नेड़े आओ हरियां ताजियां सब्जियां और जी सस्ती ग्रोसरी वास्ते पहुंचो इंडियन फ्रूट लैंड ते सानू माण है कनेडियन होने का कनेडियन होने के नाते सोफा मार ते कैसा लेदर जेडे के इको ओनर ने और कस्टम मेड सोफे तैयार कर दे ने कनेडियन मेड अपने घर दे लिविंग रूम दी गिनती मिनती करके लेके जाओ ते हंसा सोफा तैयार करवाओ चार सीटा वाला पांच सीटा वाला तुहाडी अपनी मर्जी आ 11x11 10x10 दा सोफा सिर्फ तैयार करवा सकते हो इन्हां दी फैक्ट्री है 120 डेल्टा पार्क उथे बहुत वड्डा शोरूम है ते पहला शोरूम है 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन नंबर है परमजीत कौर फोन दा 905-792-80-53 905-792-8053 सोफा मार्ट और कैसा लेदर इको ही कंपनी दा नाम
2: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋਏ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬਰਾਡ ਹੈਂਬਰ ਪਰਸਨਲ ਇੰਜਰੀ ਲੋਇਰਸ ਦੇ ਰੂਪਾ ਬਰਾਡ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-991-5939 416-999-5939 ਚਾਹੇ ਆਰੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਬਰਾਡ ਹੈਂਬਰ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੋਰਨ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਟਡ 5 ਤਕੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੀਗਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਿਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਿੱਧੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਰਾਡ ਹੈਂਬਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਲਈ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਆਫ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਿਲਵਾਏ ਹਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹਨ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਫਰੰਟ ਫੀਸ ਹਨ ਜੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਦੇ ਡੋਨਟ ਗੈਟ ਪੇਡ ਅਨਲੈਸ ਯੂ ਗੈਟ ਪੇਡ ਕਾਲ ਰੂਪਾ ਬਰਾਰ 416-991-5939 ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲੋ ਹਾਈਵੇ 10 ਤੇ ਡੇਰੀ 6980 ਮੇਰਿਟਸ ਡਰਾਈਵ ਮਿਸਿਸਾਗਾ 416-991-5939

0: हेलो एएम 530 तो तुसी सुन रहे हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो
1: टुडे विच लाइव गलबात कर ले हुणे कॉल करो 905 564 64 44
0: 905 564 60

0: Chill morte hava. Sarabri, welcome.
1: Thank you, Navi. Good evening to you and all the listeners. Bilkul tusi sahi kiya hai ke chill mode de upar jaan de layi sanu apne finances de prati sajag hona hi pehna hai. Aur ek gal pakki hegi hai ke GICs, high interest saving accounts ya paise nu na invest karna sade paise nu bahut deep erosion laega jida आउटकम ए है हाउस रिच कैश पुअर पुअर रिटायरमेंट डेज. रिटायरमेंट देखो तुहाडी हेल्थ दे नाल डिफाइन हुंदी है, सो आपां अपनी हेल्थ दी तां टेक केयर करनी करनी है, बट अगर असीं फाइनेंशियली स्ट्रोंगर हैं, फाइनेंशियली प्रूडेंट हैं, फिजिकल हेल्थ साडी चंगी है, तो तुहाडे रिटायरमेंट दे साल जदों तुसीं अपने जिहड़े शौक है उहनां नूं पूरे करना है, अपना कोई चैरिटेबल इवेंट है उहनूं देखना है, मतलब वी नीड मनी. और देखो जी अज की डेट के GIC 3% या 3.5% दे रही है तुहानू, हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट 1.85% 2%, TSX हैज ऑलरेडी डिलीवर्ड ओवर 14%, S&P 500 12.7, Nasdaq 13.7, जे आप जापान की गल करिए इट हैज ऑलरेडी डिलीवर 28%, इमरजिंग मार्केट 24%. मुद्दा की है, हाउ वैन वेयर असी ये पैसे इनवैसट कर सकते हैं इन मार्केट्स के, how to find the right stock, right product, what is the timeline. So ye bade important questions ne jinna de answers sade kol nahi hai, te lack of understanding, lack of knowledge, lack of interest sade actions nu regulate karda hai jide karke assi paise invest nahi karde. Par main dassna chahunda hai ga, on the other hand statistical numbers jede bahut last week hi release hoye ne, Canadian wealth has grown close to $19 trillion, $548 billion di worth is saal bhi create ho chuki hai. Ida matlab ki hai, are we one of those who are paying attention to our finances, ki assi investment vehicles di sahi selection kar rahe ha, ki assi ajj di earned income nu kal di free retirement assets de vich tabdeel karna chahne ha, te ohde piche planning kithe hai, tax kivein bachana hai, kede vehicles nu use karna hai, kithe invest karna hai, actively manage kaun karega. So all these questions need to be answered by people who are doing it or in the team. So that's what our main job is. Sada din pratidin ehi kaam hai ki assi apne clients nu above average return kivein leke deni hai, aur eh return is saal bhi assi we have been successfully doing it. Blended return, Navi, mainu dasde hoye badi khushi ho rahi hai ke between Canada, US and global market saadi return jehdi hegi hai oh high double digit hai, above 20%. Eh main is karke keh reha hai ga because I follow the same principle of investing for most of my clients, because I'm not a confused individual ke saade kol portfolio di kami hai ya selection di kami hai, bhav ke mere clients bhi similar hai, unna de risk appetite similar hai, और जो मैं सिलेक्शन करनी है तो मैं देखना है कि मैं उन्होंने विद इन दो 5 or 6 फंड्स किने जिहड़ा है आई वुड से स्टेशन करना है, प्लेसमेंट देनी हैगी है. एक्टिव मैनेजमेंट तो की भाव है, एक्टिव मैनेजमेंट तो भाव है जो पोर्टफोलियो मैनेजर जिहड़े स्टार स्टॉक्स है परफॉर्मिंग कंपनीज है उन्होंने हिस्सेदारी अपने फंड दे विच पाता है जिहदे नाल तुहाडी रिटर्न एक वेटेड एवरेज इंडेक्स की रिटर्न तो कितने ज्यादा है. खास करके वो लोग जिहड़े ETF दे विच इन्वेस्ट कर रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ वेटेड इंडेक्स दे विच इन्वेस्ट कर रहे हैं फंड दे विच या ETF दे विच, दे शुड आल्सो टॉक टू मी, दे विल बी अमेज्ड कि उन्हां दी MER दी थ्योरी फेल हो जाएगी व्हेन दे विल सी कि हाउ रिटर्न्स गेट फ्लोन. सो इस करके राइट अमाउंट ऑफ नॉलेज एंड राइट अमाउंट ऑफ एक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और पैसा उही नहीं है जिहड़ा तुसीं कमा लिया उही अपना वधना है, वी हैव मनी सिटिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूशन, we have knowledge sitting from other individuals jehde ki apne apne field de maharthi ne. So is karke do not waste time because time is hard to get back. Tuhanu healing ta mil jandi hai lekin tuhanu desired results nahi mil paunde. Kinne log ne jinna ne FHSA account kholya apne young bachiyan layi, unhanu FHSA de benefits nahi pata hage, TFSA de benefits nahi pata ne. So is karke ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚ ਬੈਠੀ ਸੜਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ. ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਵੈਲਿਊ ਯੂ ਆਰ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਨੋਟ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਮਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈਸ ਕੋਨਫੀਡੈਂਸ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਸ ਹੈਪੀਨੈਸ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.